ياسين.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में दिन के वक्त शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, कश्मीर और मुनिखा पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत, इस्लामाबाद 26 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 31, कराची 29, पिशावर 25, कोयटा 18, मुजफ्फराबाद 23, गिलगित और मरी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू, पुलवामा, शुपियां और बारामूला में मौसम गर्म खुश्क रहेगा। लेह और अनंतनाग में मतला जजवी तौर पर अबरादूर और मौसम खुश्क, जबकि श्रीनगर में खुश्क रहने की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, शुपियां और बारामूला में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, पुलवामा 15, जम्मू 30, लेह 4 और अनंतनाग में 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों तजियों के लिए आई हमारी वेबसाइट radio.jv.pk पर।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामनो दिल और जबी। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रजमगाहे जिंदगानी में है ये।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

101 FM。

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मनोरम रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: 8 a.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Thursday, 4th of Zilhaj, May the 21st, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has reaffirmed Pakistan's commitment to maintain robust and forward-looking engagement with the United Kingdom. The President has commended the long-standing contributions of the Aga Khan Development Network to Pakistan in multiple sectors. Pakistan and the Asian Infrastructure Investment Bank have agreed to further expand cooperation in the energy sector. The Chief of the Naval Staff has conferred military awards upon naval personnel in recognition of their services.
1: सामने वालों का बकरा भी आ गया। बाबा चलें ना मंडी।
2: अभी चलते हैं।
3: पैसे रख लिए?
2: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है। बराहे रास्त।
4: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्त से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराहे रास्त।
1: सामने वालों का बकरा भी आ गया। बाबा चले ना मंडी।
2: अभी चलते हैं।
3: पैसे रख लिए?
2: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है। बराहे रास्त।
4: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्त से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराहे रास्त।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है, ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बे फॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: listening to FM 101, a Bale Bale or Shawa Shawa.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकनी यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

0: शुक्रिया, आपने एफएम मोनोवन ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकनी यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने बरतानिया के साथ मजबूत और मुस्तकबिल की जरूरियात से हम आहंग तआवुन बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। सदर ने पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर अपने चीनी हममनसब और आवाम को दिली मुबारकबाद दी है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ईद उल अजहा के मौके पर सूबे भर में मवेशी मंडियों के लिए खुसूसी निगरानी का मंसूबा शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा है। और अब खबरों की तफसील।
1: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए? कैश रख लिया ना इबादत से?
2: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में। पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
3: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
1: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए? कैश रख लिया ना इबादत से?
2: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में। पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
3: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
4: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: This is FM 101.
3: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

This is FM 101.

0: अल्लाह खैर, हमारे साथ मौजूद थे एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, वालेकुम सलाम। अनिला जी, क्या है, खैरियत है?
0: मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन मौजूद है, कहाँ से?
1: मैं फजल में ही बात कर रहा हूँ।
2: शुक्रिया, आपने ऐसे मनोवन की।

0: मैंने सुना है खानदानी में सुबह बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
1: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
1: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
0: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान।

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: This is FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
7: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

0: The UN General Assembly has unanimously passed a resolution sponsored by Pakistan and the Philippines that underscores the need for promoting inter-religious and intercultural dialogue. Pakistan has strongly condemned unlawful interception of the global Samud flotilla by Israeli occupying forces in the international waters.
1: Be back after this commercial break.
2: Rast. Rast.
3: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराए रास्त तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराए रास्त
4: 101 FM
2: रास्त।
5: रास्त।
3: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराए रास्त तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराए रास्त
6: दिस इज FM 101
7: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी की तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: जे तू लब दा वफा फिर दा नी लबनी रुक जाए सजा दा सजनी जब

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
6: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दिस इज FM 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: खवातीनो हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं, और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह कमाल मेरा।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
6: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या,

0: हाँ जी
1: इतना मुश्किल नाम क्यों रख लिया?
0: मेरे पापा ने रखा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने इसलिए रखा ताकि सुनने वाले को समझ ना आए। हाँ मैंने भी नहीं सुना। आप मुझे समझाए ना, मुझे अच्छा लगेगा।
0: सर आपके घर में कल भी मेरी कॉल करती थी, मैं तो तुम्हें पिछले एक महीने से कॉल कर रही हूँ, अब जाके मेरी कॉल पे चाहिए।
1: थैंक यू वेरी मच हिंदा। आपके नाम का मतलब क्या है?
0: सर बर्दाश्त करने वाली।
1: बर्दाश्त करने वाली, और यकीनन आप गुस्सा काफी करती होंगी।
0: इंतहा से ज्यादा
1: है ना। अब फिर इसका ये मतलब बोलना चाहिए था जिसको बर्दाश्त किया जाता है। जबरदस्त है, जबरदस्त है शिंजा। और शिंजा ने अभी कॉल की तो मुझे याद आया कि आज मैं अनाउंस करना भूल गया, रेडियो पाकिस्तान में इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है जी। और
0: बहुत ज्यादा मूड पर, मेरी एज का डिफरेंस आ गया।
1: आपके कितनी एज का डिफरेंस आ गया?
0: 17
1: जी।
0: मैं 17 की हूं।
1: और किस क्लास में?
0: मैं इंटर का पार्ट 1 कर रही हूं
1: जी।
0: इंटर का पार्ट 1।
1: और यहाँ पे मुझे एक दो और भी लड़के हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था, मैंने उन्हें कहा आप अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जो है ना अपना हार्ड फॉर्म में, इंटर में भी मैंने पहले भी अनाउंस किया था और कल भी रहमान के शो में भी इस चीज़ को अनाउंस किया कि जो लोग बड़े शार्प हैं बोलने में, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो भी आ सकते हैं। और उसके लिए ये है कि अगर ऑनलाइन सबमिशन नहीं हो पा रही, वो फॉर्म जो है अपनी एक कंप्लीट CV विद द रिक्वेस्ट फॉर इंटर्नशिप स्टेशन डायरेक्टर के नाम लिख के भिजवा दें, हार्ड फॉर्म में हम उन्हें कंसिडर कर लेंगे। बहरहाल बाकी भी साहिबान जो मुझे एक दो लड़कों ने भी किया उन्हें भी मैंने बताया, और इसके अलावा भी अगर जिसमें है जी समझते हैं तो उनका थोड़ा सा हम इंटरव्यू कर लेंगे, अगर एलिजिबिलिटी हुई तो डेफिनेटली वी गोना अकोमोडेट देम।
0: दोबारा मौका मिला मैं जरूर इससे ट्राई करूंगी, पर फिलहाल मुझे मेरे पापा ने परमिशन नहीं देंगे।
1: आप पापा को भेज दें, उन्हें सिखा देते हैं। थैंक यू वेरी मच शिंजा। आपको कौन सा कलर पसंद है?
0: मुझे ब्लैक।
1: ब्लैक, ब्लैक पे तो पिछले हफ्ते बात कर लिया हमने।
0: आपके लिए हर नमाज में दुआ करती हूं।
1: थैंक यू वेरी मच। क्या दुआ करती हैं?
0: मैं अल्लाह ब्लेस मी द BMW।
1: ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच शिंजा। आप हर शो में मेरी कॉल किया करो।
0: BMW का मतलब पता क्या है?
1: हुण कोई नवी थ्योरी निकल आनी है, दसो। हेलो, और मैं गड्डी समझया सी। चलो भाग जाओ। थैंक यू शिंजा।
0: ओके सर,
1: अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो, एक ही कारता कुड़ी ने। एनीवेज यहाँ पे गाना लगाते हैं, वापस आके मैं सवाल पूछेगा ब्लू के बारे में, फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं। इनको लोग कैसे पसंद होते हैं? वो ये क्या लग गया? सोडा वाटर नहीं दख्तर, साहिबा ने गाया था, दोबारा से आ रहा है हिप हॉप मिक्स के साथ। मैं कि चलो थोड़ा सा सोडा शोडा भी चलना चाहिए, पीते तो रहते हैं, सुनना भी चाहिए। क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: Enjoy the number and don't go anywhere. This is Arthodox and we are talking about psychology of blue color. और ये किन लोगों को पसंद करते हैं और किन को ना पसंद करते हैं, वापस आके उस पर बात करेंगे और फिर इनका कंपैटिबिलिटी बात करेंगे आज ब्लू की। एंड थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं जी, साथ साथ गाना भी सुने। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, लाहौर से आमना है, मेरा कलर ब्लैक है, लास्ट थर्सडे को ब्लैक में बात की। और अगर आपने नहीं सुना तो आप इंतज़ार कीजिए, दोबारा दोहराएंगे इसे किसी दिन, जुमेरात वाले दिन बात करते हैं। एडी मुल्तान से सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक सवाल है कि क्या एट का आज के दौर में रियल मोहब्बत हो सकती है? मुझे तो लगता है सिर्फ हुस्न व जमाल और पैसे की गेम है, भजन मोहब्बत होती है ना। आपका सवाल करना ही ये कह रहा है कि आप चीजों को अदरवाइज

देखते हैं। और इस तरह बहुत सारे लोग जो कहते हैं आजकल क्या मोहब्बत हो सकती है जबकि ये है, तो ये सवाल का पूछना, ये बता रहा मोहब्बत हो सकती है और होती है, सारे ही सिर्फ उसी लय में नहीं लगे कि जहाँ पे सिर्फ पैसे की गेम हो। बहुत सारे आप जैसे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हमें पैसा नहीं हमें प्यार चाहिए, जिनका ताल्लुक आज भी दिलों का जुड़ता है इमोशन से, एंड दिस इज़ द रियलिटी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज़ गुफ्तगू का हिस्सा होती है वो तभी गुफ्तगू का हिस्सा बनती है जब वो एग्जिस्ट करती है। अदनूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी, आदाब की आपने तस्लीम, सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, कैसे हैं? शो बहुत अच्छा, आई एम मुगलिमा जेबा गुल चार सद्दा से। इतना मुश्किल नाम कैसे रख लिया आपने? आज मेरे शो में इतने मुश्किल नाम वाले कहां से आ रही हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग चार सद्दा से। चार सद्दा से वो अपना कुछ चप्पल शप्पल तो भेजे ना पिशावरी। साइमा रफीक लाहौर से सुन रही हैं जी, अस्सलाम वालेकुम आज डॉक्स, आज मोहसिन, आज के टॉपिक अच्छा है सर, मुझको रेनबो कलर बहुत पसंद है, एलो कर लो कर एक कलर की बात है, हम इकट्ठे साथ पे पहुंच गए, जस्ट इमेजिन यू आर वेयरिंग रेनबो कलर ऑलवेज हर वक्त। असमा कहती है सलाम है मोहब्बत। तस्लीम जी कैसे हैं? चांद मैं ठीक हूँ चंदा, इफ यू डोंट माइंड प्लीज टेल मी योर बर्थडे 22nd December काइंडली, अगर नहीं बताएंगे तब भी इट्स ओके, बहुत प्यारी स्माइल है, सलामत रहें खुश रहें, थैंक यू वेरी मच, आई हैव टोल्ड यू। एंड सुहान वर्ता कुछ रिप्लाई, सुहान वर्ता क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं फर्स्ट, आप कहाँ से सुन रहे हैं सुहान? और अभी आपका कमेंट देखा, बिन तस्दीक ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। फरा अफजाल साहिबा ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जाहिद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम। सुहान कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं, मुझे बताइए कहाँ से हैं आप? इट्स एन अदर डिफरेंट नेम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरजान अली, मैं ठीक हूँ। एनीवेज जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं और इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ब्लू कलर, और अभी वापस आके मैं फिर एक सवाल भी पूछूंगा 11:30 के बाद, जिसका जवाब देने पे आपको एक और 1000 रुपया वेलवीरा स्किन केयर कंपनी की तरफ से दिया जाएगा जी। और जिस पर फिर दोहराता जाऊँ कि 50% ऑफ है जी 30th तक, और उधर वहाँ पे मैं अपने फेसबुक पे अपलोड करूँगा, वहाँ पे आप उधर वहाँ पे उधर व्हाट्सएप नंबर वगैरह आ जाता है, उनका प्रोमो कोड है RJ_DOX डॉक्स लिखें और आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंडली रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन पे इंटर्नशिप का आगाज़ हो चुका है, और इंटर्नशिप में हम आपको ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेट करना, ब्रॉडकास्टिंग योरसेल्फ सिखाएंगे, और उसके लिए आपने FM 101 लाहौर की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म की सबमिशन है, वहाँ पे भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। ओके, बिहार से सुहान वर्ता बिहार से, भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? फिट हैं? मौसम कैसा है वहाँ का? वेरी गो जी, ये आपके लिए गाना सुहान भाई, आपके लिए। Stay tuned, don't go anywhere, this is RJ Docs.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, मेरे ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Coming up next, RJ Talks on your radio dial. Keep it locked.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:32 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और आपका मेरा साथ होता है जी बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और जुमेरात वाले प्रोग्राम हम कर रहे हैं आजकल, वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑन साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, एंड आज के दिन हम बात करें ब्लू कलर पे। बिनते हवा कहती हैं, इस्लामाबाद में सिमली डैम से शुरू होता है, जाता कहाँ तक है बिनते हवा। माजबीन कहती है, एक्चुअली आप किसी को लाइफ में आने ही नहीं देते वो आपसे बेवफाई कर सके। ठीक है माजबीन, लेकिन आपने तो जुमला मेरे पे लगाया था, वो जुमला आपका हिट हो गया है कि जी ओहो ठीक है। Anyways, let's talk about the color and उसके अलावा कॉल लेंगे और कॉल पे सवाल भी पूछेंगे हम। अच्छा जी, ब्लू कलर के बारे में बात कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल सेटअप जो बने होते हैं या कोई कंपनीज मल्टी नेशनल लाजमी कंपनीज ब्लू कलर को यूज़ करती हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोफेशनलिज्म और बड़ा ही माहिराना किस्म के अंदाज को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, रेड पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये लोगों के बारे में मैं पहले बता चुका किस तरह के होते हैं और क्या इनमें ट्रेट्स पाए जाते हैं। अगर मोहसिन आपको याद है कुछ बताएंगे क्या मैंने फरमाया था
1: ये इसके ब्लू के बारे में?
0: हाँ जी,
1: एक तो आपने बताया था कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं।
0: अच्छा, एवं बिला वजह मैं किया ही नहीं अपने वालों ही
1: सेंसिटिव होते मैं अपनी बता रहा हूँ ना जो मैं हूँ
0: वो सारे ही होते हैं यार सेंसिटिव होते हैं, लॉयल होते हैं, लॉयल थॉटफुल होते हैं, लॉयल
1: होते हैं,
0: थॉटफुल होते हैं, चीजों को जरा सोचते हैं, काम रहते हैं, इमोशनली जल्दी से एक्ट नहीं शुरू कर देते, रिएक्शन फौरन नहीं देते, बड़ा रिलैक्स रहते हैं, कूल माइंडेड किस्म के होते हैं, ट्रस्ट किया जा सकता है इनसे। और इनसे जब बात की जाए ये आपको हील करने की पूरी कोशिश करते हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, और ये पसंद करते हैं ऑनेस्टी को, वैसे ये तो सारी पसंद कर देने। कोई है ऐसे जो झूठ को पसंद करता हो?
1: नो
0: मैं करता हूँ बोलो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है झूठी तारीफें किया करो मेरी मैं झूठ बहुत अच्छा लगता है खुल के झूठी तारीफ।
1: देखिए कुछ चीजें होती हैं कि जिनमें बंदा खुश होता है।
0: हाँ है ना, तो हाल है नूर कह रही है मेरी एक फ्रेंड ने मुझे टाइम दिया था और फिर उसके बाद अच्छा है 2 घंटे इंतजार करवाया, कोई बात नहीं, खैर उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपका और आपके फ्रेंड का मामला है। और बिनते हवा कहती है, सरगोदा के वेस्ट पर जो रिवर है उसके साथ मर्ज होता, वेस्ट पे कौन सा रिवर है ये भी बताएं मुझे, आप मुझे पहेलियां ना बुझाएं, सीधी बात बताएं जाता किधर है, आप मुझे पहेलियां बुझा रही हैं, वेस्ट और ईस्ट में उलझाए जा रही हैं, मुझे ये नहीं बता रही कि किस रिवर में जाके मिलता है। जिमल आई है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इस्लामाबाद में ट्रांसमिशन नहीं आ रही और लाइव पे सिग्नल की प्रॉब्लम है। हेलो शाह जी, चेक करें प्लीज, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में ट्रांसमिशन नहीं आ रही यार। अच्छा, और ये ऑनेस्टी को पसंद करते हैं जी ब्लू वाले जो होते हैं, और इन्हें पीसफुल इन्वायरमेंट जो होता है ना वहाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, किसी के साथ भी ताल्लुक है, रिलेशनशिप में हो तो इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं, और मीनिंगफुल किस्म का रिलेशनशिप, और इसमें कभी कभी गिव एंड टेक भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा होता है, चीज़ें कैलकुलेट भी कर रहे होते हैं, यू नो बिजनेस माइंडसेट होता है। और नापसंद करते हैं टॉक्सिक किस्म के बिहेवियर को, टॉक्सिक बिहेवियर, यानी अब मैं क्या कहूँ इस पर आपको। ज़ीशान नासर मेरा भाई, क्या बात है, क्या हाल है ज़ीशान, मैसेज किया ज़ीशान, कह रहे हैं सर वे टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर इंटर्नशिप, बस एज थोड़ी ऊपर हो गई आओ आओ ज़ीशान भी आएगा, और इंशाल्लाह हम अपने आरजेज एनलिस्ट किए हैं उनमें ज़ीशान नासिर हमारा इस्लामाबाद के आरजे हैं, ये भी आएंगे वहाँ पे सेशन में, जो हमने ऑफ माइक एंड ऑन माइक सेशन करने हैं उनमें से एक में ज़ीशान भी आएंगे। और आई होप आपने रिक्वेस्ट जो है ना डायरेक्ट लेके आनी है, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कहाँ लेके आनी है, ठीक है बड़ी चार हो तुम, ड्रामे में एक्टिंग कर करके ना अब यहाँ पे भी एक्टिंग शुरू कर दी बहरहाल यार ज़ीशान हैट्स ऑफ, बड़ी बहुत अच्छा एक्ट किया, मैं मतलब बिग फैन, बिग फैन, बहुत अच्छी एक्टिंग की। और माजबीन कहती हैं सर पाकिस्तान के अजय देवगन लगते हैं, ये झूठ कैसा है? नहीं ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, सच लगना शुरू हो गया, गलत ये नहीं पसंद आया। बिनते हवा कहती हैं पापा से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, नेक्स्ट टाइम पूछ के उस रिवर का नाम भी बताऊंगी। दान जिशान भाई थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, इफ़ यू लाइक ब्लू कलर लेट मी टेल यू कि ब्लू कलर को पसंद करने वाले लोगों को जो नापसंद होते हैं वो टॉक्सिक किस्म के बिहेवियर नापसंद होते हैं, और इमोशनल मेलो ड्रामा, इमोशनल ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं करते लोग, के हर वक्त ही ड्रामा किया हो और हर वक्त ही रोना धोना चल रहा हो, और मैनिपुलेशन भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंड अच्छी अच्छी सीधी सीधी बात होनी चाहिए जो भी बात हो। लॉस ऑफ लव, आई एम रियली वेरी ऑनर्ड टू हैव यू बडी ऑन माई लाइव स्ट्रीम। जिशान नासिर को सारे जानते हैं और 101 में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा होगा जो जिशान नासिर, आज जिशान नासिर को नहीं जानता, और मेरा जिशान से इंटरेक्शन हुआ, इस्लामाबाद में भी शो किया, फिर लाहौर में किया, उसके अलावा भी गपशप रही, बाहैसियत इंसान, सच ए लवली पर्सन, मुझे मज़ा आया मिल के, एंड आई डू ट्रीट हिम लाइक माई यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई की तरह से, एंड डेफिनेटली आई ट्रीट हिम ऑलवेज, हूँ नहीं हूँ जहाँ पे भी हूँ विल ऑलवेज बी माई ब्रदर। ओके फरा अफजाल, एग्री विद द ट्रेड्स ऑफ ब्लू कलर, गुड एनालिसिस सर, थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ पे अब कॉल लेते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कौन है जी कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
2: जी सर सखावत अली मखातिब हूं जिलासा की वाल से।
0: कैसे हैं सखावत आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करे। मैं सर आप बताएं कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। सखावत मैं आपसे सवाल पूछता हूं।
2: जी
0: और चले वही सवाल है जो पहले पूछा था, पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद शहर है जिसका नक्शा जो है ना जी, जो यूनियन जैक बरतानवी परचम को सामने रख कर डिजाइन किया गया था?
2: सर इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो आपने सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा उसके बारे में जरूर जरूर गाइड करूंगा, वो किला रानी कोट।
0: उसके कितने दरवाजे हैं
2: सर? ये मालूम नहीं।
0: तो फिर कोई बात ना हुई। फिर ये तो पहले भी पता चल गया ना यार, तो मुझे बताते कि आप दरवाजे कितने हैं ना।
2: सर मैंने आपका ये टॉपिक सुना था और मुझे ये नहीं मालूम था कि आपने दरवाजे भी पूछे हैं।
0: चले ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे
2: सर? मेहरबानी, शुक्रिया, और मेरी तरफ से तमाम FM 101 के लिसनर्स को सलाम।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल,
2: मेहरबानी,
0: अल्लाह बिनते हवा कहती है माशाल्लाह सच अ गुड सोल यू हैव सर, नेवर हेजिटेट टू प्रेस गुड थिंग्स। गुड थिंग नहीं, थिंग ही बना आता है बंदे नू। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जानी, हाउ आर यू जानी?
2: यानी पिनो जी क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से?
2: चले
0: ये बर्दाश्त है, मामू ना बोले बस। बाकी ठीक है अंकल, इज गुड।
2: वो जो पिछले दफा मैंने आपको वाकया सुनाया था वाला जेलिस वाला, उसमें आपने गौर नहीं किया था, उसमें वो बोल क्या रही थी आपकी भाभी कि वो उसका फोन आया था उससे पूछा कि भाभी आज क्या बना रही हो?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: तो आप मुझे कुछ बोलते रहो सही ना, है क्या भाभी? अभी बोले
0: लंबी हो जाएगी क्या
2: बोला था उसने? अरे तो हमारे उस्ताद का कहना ना, उस्ताद उमर शरीफ का, सामने वाला कह रहा है ना कहने दो उसको, अपना ईमान मजबूत रखो बस।
0: हाँ नहीं सही बात है, खुद आप कहने वाले की बात को इग्नोर किए जाए, अपनी सुनाई जाए, है ना?
2: नहीं वो कह रही है ना कि भाई जान क्या ले हो, तो तू बोलती रहे भाई, मैं समझूंगा।
0: सही है।
2: मैं समझूंगा तो होगा ना भाई।
0: सही कह रहे हैं। आपसे सवाल पूछूं मैं?
2: आप ये वो जो आप उसके बारे में कह रहे थे झंडे के बारे में,
0: हाँ नहीं मैं बदलूंगा सवाल, मैं बदलूंगा। रानी कोट का जो नॉर्थ साइड पे दरवाजा है उसका क्या नाम है?
2: नहीं सर उसका मुझे नहीं पता, मुझे आप फिर इजाजत दें आप, मैं सुफियाना कलाम
0: चले ठीक है
2: सुफियाना कलाम सर मैं चाह रहा हूँ
0: सर, एक मिनट में सुना दे, वक्त बड़ा थोड़ा।

0: कलंदर लाल, मैनू खाली नटाल जी शिवानी लाल, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया
1: सर थैंक यू
0: लगिया मोला मैं तो तेरिया।
1: थैंक यू वेरी मच अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर ब्यूटीफुल कॉल। माजबीन कहती है सर आपकी आईज बहुत खूबसूरत है एंड आईब्रोज जैसे तीर कमान। हाँ ये इस तरह की झूठी तारीफ करें, आई लाइक इट। अच्छा जी अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, ब्लू कलर की, किसके किस कौन से कलर को पसंद करने वाले के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी है। इफ यू टॉक अबाउट ब्लू कलर लवर्स तो उनकी कंपैटिबिलिटी जो रेटिंग है जी वो वाइट कलर जो पसंद करते हैं उनके साथ 95% बनती है, क्योंकि पीसफुल इमोशनल बॉन्ड होता है इनमें, इमोशनल अटैचमेंट अच्छी बनती है और इनके बॉन्डिंग अच्छी होती है। लेकिन इसमें पॉसिबल जो इशू आ सकता है वो खामोशी का आ जाता है, अक्सर दोनों खामोश हो जाते हैं, मैं भी नहीं बोलता वो भी नहीं बोलती, ना वो लड़ती है ना मैं लड़ता हूँ, क्यों भाई को है
2: नहीं हम दोनों लड़ते हैं।
1: पाबी कौन सा कलर पसंद करते हैं
2: सर? उनको रेड पसंद है।
1: अच्छा फिर बनता। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये अब भी मैं आपको बताऊंगा ये कलर लाइक है। फादर शिजाद खोकर साहब ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। और ब्लू का ग्रीन कलर पसंद करने वालों के साथ 90% कंपैटिबिलिटी है, हीलिंग रिलेशनशिप यानी एक दूसरे को बड़ा अच्छा सपोर्ट करके चलते हैं। और इनमें पॉसिबल इशू जो आ सकता है लैक ऑफ एक्साइटमेंट, यानी एक दूसरे के साथ जो है ना एक्साइटमेंट का वो जो एलिमेंट होता है वो कम पाया जाता है। और अगर ब्लू और रेड की कंपैटिबिलिटी चेक करें 61% माय डियर। अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट, एक ऑपोजिट की अट्रैक्शन तो है ही है दोनों में, लेकिन इमोशनल इम्बैलेंस है।
2: बिल्कुल ठीक है,
1: दोनों में जो है ना इम्बैलेंस होता रहता है चीजें जज्बाती तौर पे,
2: ऐसा ही
1: जिस पे अक्सर झगड़ा चुगड़ा भी हो जाता है।
2: बिल्कुल ठीक
1: है ना,
2: सही कह रहे हैं।
1: और अगर ब्लू कलर को येलो के साथ करें तो येलो लवर के साथ 70% है और स्टेबिलिटी प्लस एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा मैच करता है और इनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज की वजह से आपस में थोड़ा सा क्लैश आ सकता है। हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब शहजाद साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं जी?
3: जी आपकी दुआएं माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है,
1: बड़ी मेहरबानी।
3: तो आपने ब्लू कलर का है लेकिन मुझे ब्लैक कलर पसंद है जी।
1: अच्छा ब्लैक कलर पे पिछले हफ्ते मैंने बताया, आप वेट करें दोबारा इस पे फिर बात करेंगे।
3: उसकी बात है ना ब्लैक कलर क्यों पसंद है वो बताता हूँ ना आपको।
1: जी जी जल्दी से बताइए।
3: मेरा एक दोस्त था उसका नाम ब्लैक था, वो काला काला उसको कहते थे।
1: नहीं ब्लैक नहीं था, सीधा कहो के काला सी।
3: बिल्कुल काला था। काफी दिन हो गए मुझे मिलने नहीं आया। एक दफा मैं उसके घर गया हूँ, मैं जाके आवाज लगाई हो काले कारे गए तो उसको भी काला आके बाहर कहना काला का दिएगा।
1: वेरी नाइस।
3: इस तो मैंने बड़ा पसंद है जी काला रंग से, माशाल्लाह तुम्हारे वास्ते बोतिया बोतिया।
1: थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया।
3: अल्लाह हाफिज़ जी,
1: बहुत अच्छा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप गिन कहती हैं उन्हें ब्लैक कलर पसंद है। रिजवान सिद्दीकी फ्रॉम भेरा, सर दो दफ़ा मेरी कॉल लगी है लेकिन आपने पिक नहीं की। ओके बड़ी माजरत, कॉल का नंबर बिल्कुल यही है जी 04221000101। सर मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, ब्लू कलर के बारे में बात चली है। ब्लू का अगर येलो के साथ आप देखें मैंने बता दिया, पिंक के साथ अगर कंपैटिबिलिटी देखें जी पिंक लवर्स के साथ तो 86% बनती है ऑलमोस्ट। और इमोशनली जज्बाती तौर पर दोनों की अटैचमेंट अच्छी होती है यहाँ पर भी, और लेकिन सेंसिटिविटी ओवरलोडेड होती है, दोनों छोटी छोटी बात पे मुंह बना लेते हैं, जाओ मैं नहीं बात करती तुमसे। कुछ इस तरह का सीन भी चलता है। और पर्पल के साथ 85% है, डीप किस्म की अंडरस्टैंडिंग, दोनों मियां बीवी या बंदी बंदा बह के फलसफे के अंदर घुसे रहते हैं, डीप थॉट्स, ओहो हवा में महलात तामीर करते रहते हैं
2: दोनों प्रोफेसर्स हो,
1: लेकिन फिर इमोशनल कन्फ्यूजन भी हो जाती है इनके दरमियान बहुत सारी। और अगर ग्रे के साथ चेक करें 88% है और मैच्योर कम्युनिकेशन होती है दोनों में और इमोशनली रिवर्स होते हैं दोनों, एक दूसरे से रिवर्स चल रहे होते हैं। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन है जी हमारे साथ?
4: दस भाई मैं फजल महमूद बात कर रहा हूँ कराची से, जरूरत करनी वाला।
1: कैसे हैं फजल भाई आप, खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं?
4: मैं यार बहुत मुश्किल से लगती है आपके शो में कॉल, कल भी मैं बहुत ट्राई करता रहा।
1: सर आपकी मेहरबानी, सर आपकी मेहरबानी, आपने फोन किया सर,
4: भाई आपसे मोहब्बत है ना
1: सर। सर सर
4: हम तो कोशिश जारी रखेंगे
1: सर, आपकी मोहब्बत
4: बात करने की,
1: सर आपकी मोहब्बत सर,
4: तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ
1: सर, आपकी मेहरबानी सर। सवाल पूछूं?
4: आप पूछें।
1: सर सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा। उर्दू का पहला जो पहले जो साहिब दीवान शायर थे कौन थे?
4: यार इसका तो मुझे इल्म नहीं है।
1: चले मैं आपको चार चॉइसेस देता हूँ, आपने इनमें से एक दो तीन अकड़ बकड़ करके ना कर देना। पहली चॉइस है
4: बराबर में आपके असरे ना मुस्कराते हैं,
1: मोहसिन, मोहसिन है हमारा,
4: है
1: ना, वो जैसे आजकल शो में नहीं होता, एक वो खातून बैठी होती है हंसती रहती है बस बात। अच्छा अब मैं बताता हूँ जी, चार चॉइसेस हैं, मीर तकी मीर, वली दक्कनी, गालिब, अकबर अलाबादी, इन चारों में से।
4: मीर तकी मीर,
1: अरे आप एक ही बजाय थोड़ा सा आगे पीछे और होते ना तो आप जीत जाते। चले फिर बताएंगे, अब तो नहीं ऐसे दो दो चांसेस तो नहीं ना होते। सर थैंक यू,
4: चलो ठीक है
1: सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
4: ठीक है भाई, अल्लाह शुक्रिया,
1: थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी हाँ जी, आप ऑनलाइन अपने फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, FM 101 लाहौर की ऑफिशियल पेज पे आएंगे फेसबुक के, वहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन है फॉर्म की, डू ज्वाइन अस। हाँ जी बिल्कुल, अभी मेरे सामने मैसेजेस हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस। अब बात करते हैं ब्लू की, ग्रे के साथ कंपैटिबिलिटी बता दी, ब्राउन के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी होती है, ब्राउन लवर के साथ 90% और 90% में ट्रस्ट एंड लॉयल्टी दोनों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वफादारी और एतमाद का रिश्ता इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो है ना इनमें पैशन जो होता है ना वो काफ़ी लो होता है, इजहार ये इशू आ सकता है। ऑरेंज के साथ अगर कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे 62% है, और ये वही है फन मीट्स काम, मतलब एक बंदा फनी है दूसरा ज़रा कूल कूल ऐसे संजीदा भी रहने वाला, और इनमें सोशल क्लैशेज हो जाते हैं माशर्ती और इस तरह के, ये करना है ये नहीं करना, ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के मामलात पे फटे हो सकते हैं। ब्लू और गोल्डन की 69% है, और दोनों में पीसफुल एम्बिशियस किस्म के होते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनके गोल्स के डिफरेंट की वजह से फड्डा आ सकता है, डिफरेंट गोल होने की वजह से। एंड ब्लू एंड सिल्वर की अगर बात करें 87% इंटेलेक्चुअल कनेक्शन होता है लेकिन इशू ओवरथिंकिंग बन सकता है, और ब्लू एंड ब्लैक का अगर हम करें तो 92% कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल सेफ्टी होती है, एक दूसरे को बड़ा अच्छा पैम्पर कर देते हैं, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा इमोशनल बम्बारमेंट होती है कि बंदा फील करना शुरू कर देता है यार ऑल टाइम आई सपोज टू पैम्पर हर वक्त। ओके दिस इज ऑल फॉर द ब्लू, और अगली दफ़ा हम बात करेंगे रेड कलर पे। हेलो कॉल लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं अगर कोई सवाल का जवाब दे पाए। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है?
1: अल्लाह का शुक्र जी, कौन है हमारे साथ?
5: साहिर बात कर रहा हूँ लाहौर से।
1: साहिर
5: जी जी,
1: मेरे पे जादू ना कर देना भाई कोई।
5: नहीं नहीं जादू क्यों करना, हमने आपकी बातें सुन के जादू तो हमारे ऊपर हो गया।
1: अच्छा सुनाए।
5: अल्लाह का शुक्र है खैरियत है, आप सुनाए। माशाल्लाह ईद की तैयारी ठीक हो रही है?
1: हाँ जी ईद की तैयारी बस ठीक है, मैं घर वाले ने कहा मेरे वास्ते दो तीन हार ले आओ, ईद की कुर्बानी मेरी कर लेना। महंगाई बहुत है।
5: अल्लाह खैर करे ऐसा वक्त भी ना आ जाए।
1: अच्छा आप तवक्को करते हैं बाकी अल्लाह खैर करेगा। सवाल पूछूं जी आपसे?
5: जी
1: चले आपसे सवाल पूछता हूँ। अच्छा अगर खला में कोई बहुत बड़ा धमाका या सितारा फट जाए तो दे। उसकी आवाज जमीन पर कैसे सुनाई देगी आपको?
5: जमीन पर कैसे सुनाई देगी? तो जब आवाज होगी तो आवाज तो खुद ब खुद आ जाएगी।
1: कैसी होगी? डा डूज डिजम, क्या मतलब भाव लाइक कैसे?
5: यानी के धर्म की आवाज होगी।
1: धर्म की आवाज आएगी। ओके
5: जी जी, धर्म की
1: धड़ाम की आवाज उस वक्त आती है जब बंदा बेड पे सुता है ना एकदम कोने तो थल्ले डिग पे, तो फिर धड़ाम की आवाज आती है, बंदा कहता है ये क्या हुआ, मैं नीचे कहां से आ गया हूं। अच्छा चले खिलाफ है ना वो कहते हैं आवाज ट्रेवल नहीं करती।
5: ٹھیک ہے. نہیں تو یہ جو جہاد وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں
1: وہ خلاف میں نہیں ہوتے, وہ فضا میں ہوتے ہیں. ابھی
5: جب وہ فضا میں ہوتے ہیں یعنی کہ فضا کے اوپر خلا ہے.
1: ہاں فضا کے اوپر.
5: چلے یہ بھی کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے ہمیں. ہم تو بہت کچھ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے. جتنے بھی سننے والے ہیں تمام کو میری طرف سے عید مبارک اور سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.
5: اللہ حافظ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.
1: اللہ شکریہ. اللہ حافظ. پھر کال لینے کی کوشش. بلکہ نہیں میسیجز پڑھتے ہیں نا فیس بک کے لاہور والے میسیجز کو پڑھتے ہیں. لیٹس ریڈ دوز میسیجز. تم نے بتایا نہیں یار تم کیا کرتے ہو لڑکے. آج لگتا ہے ایک ہی کارڈ جانا سی ایک ہی گیا ہے. سوال زیادہ اوکھے ہو گئے
2: جی. یس
1: تو تھوڑے سی بھائی کرنا بھی گوگل تو چلو گوگل پہ بھی تھوڑی ایفرٹ تو ہونی چاہیے.
2: ایفرٹ تو ہونی چاہیے.
1: رانا اسکر صاحب نے سلام کیا وعلیکم السلام. قلب مومن نے سلام کیا وعلیکم السلام. مہانور بلوچادی نے سلام کیا وعلیکم السلام. نذیر کھوسو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں تھینک یو ویری مچ. صدیق دار صاحب نے سلام کیا وعلیکم السلام. اداس فری آپ اداس کیوں ہیں؟ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ پوچھا ہے. آر جے بننا چاہتی ہوں. اگر میں پوزیشن دوں گی تو میں ضرور سلیکٹ ہو جاؤں گی لیکن میری ایج 16 کی ہے. میں آر جے بن سکتی ہوں؟ ہاں ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا آپ بالکل اپلائی کریں اور اگر تو ہم آپ کو بلا کے انٹرویو کر لیں گے. آپ میں ابلٹی ہوئی تو بالکل آپ کو اس میں کمیونیکیشن کے لیے انرول کر لیا جائے گا. آپ انرول کریں اور وہاں پہ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہیں اسٹیشن ڈائریکٹر لاہور کے نام اپنے ان کی فوٹو کاپیز کو ارسال کر دینا. ساجد اوان ہیں میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں تھینک یو ویری مچ. جسے رانی کوٹ آپ نے لکھا پرانی بات ہو گئی. اصغر علی سر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا بندے دی فوٹو تھلے بڈیاں نکل رہی ہیں اور لڑکیوں کی فوٹو کے نیچے لڑکے نکلتے ہیں. ہمارا ایک آرج ہے اسلام آباد کا نعمان, اس نے بھی لگایا تھا ایک لڑکی کے ساتھ کنورسیشن ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نعمان ہوں. میں پہلے کنفیوز ہوا میں کہ یہ چل کر رہا ہے میری آنکھیں غلط پڑی ہیں. پھر پتا چلا کہ اچھا نہیں وہ اس کے نام سے کوئی لڑکی کا آئی ڈی سے نا لڑکا کاروائیاں کر رہا تھا. عاشق خسالی صاحب جی مہربانی آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ساجد اوان صاحب بالکل ٹھیک ہے کھانا شانا کھائیں. جن کا نام مافیا ہوتا ہے ان کے بارے میں سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ ان سے بچ کے رہا کر. مافیا سیدھا کام خراب ہی ہے ویسے. ابھی ناموں پہ میں نے بات نہیں کی, الفابیٹس پہ بعد میں بات کریں گے, ویٹ کریں اس کا. بنت صدیق نے سلام کیا وعلیکم السلام تھینک یو ویری مچ. اینڈ ایم حفیظ تھینک یو ویری مچ. ارباب علی آپ نے پوئٹری بھیجی آج میں شامل نہیں کر پاؤں گا, اس کے لیے معذرت خواہوں. قلب مومن دوبارہ رہنمائی فرمائے فارم کیسے اپلوڈ ہوگا؟ آپ نے فیس بک پہ آ کے FM 101 لاہور جو پیج ہے وہاں پہ جو پوسٹ لگی ہے اس پہ کلک کرنا ہے. آٹو فارم اوپن ہوگا, وہاں پہ جا کے آپ نے فارم سبمٹ کرنا ہے. اگر نہیں تو یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گا پی ڈی ایف فارم میں بھی اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہوتی رہے گی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ہارڈ فارم میں بھی آپ سبمٹ کر سکیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام.
6: عبد النور ہاشمی.
1: جناب ہاشمی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں مزاج
6: سے. الحمدللہ بڑے مشکل سے کال. آج تو رش بہت زیادہ ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے آج.
1: اچھا سر سنائے کیسے ہیں؟
6: الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو میں بھی امیر ہونا چاہتا ہوں.
1: لے پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں میں ایک سوال پوچھتا ہوں. پاکستان کا سرد صحرا کون سا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟
6: یہ ہے ادھر
1: شادرے سے تھوڑا سا.
6: نہیں یہ چلاس کے قریب ہے. یہ گلگت بلتستان کے قریب
1: ہے. گلگت بلتستان میں ہے تو گلگت بلتستان میں. اس کا نام کیا؟
6: اسی شہر کا نام میں نے پڑھا تھا کہیں. بہرحال ابھی نام میرا میں ہو گیا. بہرحال اسی علاقے میں
1: بوٹی گرا دوں آپ کو.
6: ہاں بوٹی گرا.
1: کے سے شروع ہوتا ہے. کاف سے. اتنی دیر سے تو گوگل بھی ہو جاتا ہے. چلے کوئی نہیں آشمی صاحب نو وریز. آج وہ کمپنی والے خوش ہوں گے ان کا 1000 بچ گیا. سر چلے وہ بتا دیں پہلا پہلے صاحب دیوان شاعر کون تھے؟
6: ولی دکنی.
1: لیکن انعام نہیں دوں گا میں کیونکہ پہلا آپ نے مس کر دیا. आप सर यहाँ पे रुकिएगा, आप यहाँ पे रुकिएगा मोहसिन,
7: ठीक है
1: आना एक मिनट। हेलो, ओके जी, ज़बरदस्त हो गया जी। अब्दुल नूर हाशमी साहब ने बता ही दिया फाइनली, दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे पता था ये बता देंगे। आई लाइक स्काई ब्लू, ब्लू के बारे में फिर बिनते सदीक, आई गेस मैंने कुछ ना कुछ ठीक बताया होगा आपको। और मलिक वसीम अवान साहब का मैसेज आया, थैंक यू वेरी मच जी। और मैं ज़रा इस्लामाबाद वाले भी दो चार मैसेजेज हैं उन्हें देख लूँ। मोहम्मद सदीक दार साहब, अमरीन लाला ने सलाम किया, जिद्दी लड़की, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप खैरियत से हैं। तलजबीन बूझोगे तो जीतेंगे, ओके ओके ओके, आगे मुझे समझ नहीं आई आपने क्या लिखा है जी। हफीज़ साहब थैंक यू वेरी मच जी। नदीम खान नाइस शो, बहुत शुक्रिया जी। और ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, अलहम्दुलिल्लाह मलखेल हैं। माज अली बदर हैं, सलाम किया, बहुत शुक्रिया। एंड जान बूझ कर गुनाह ना ले, किसका गुनाह ले लिया मैंने, मेरे तो अपने ही नहीं मुकदे, मैं किसी का क्या लूंगा गुनाह। और एनीवेज यहाँ पे मैं एक गाना चला रहा हूँ, इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली बुध को 10 बजे। और अगली बुध को ईद तो नहीं है, ईद की रात है। ओह माय गॉड, सी यू, ईद की रात को मिलेंगे ज़रा। ईद वाले दिन मैं सुबह कसाई बनाऊँगा, मछुरियाँ टोके साथ लेके आऊँगा। See you guys. This is As a Doc signing off. अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज एक ही बंदा जीता, और वो कौन जीता था? हाँ, अनीला जी,
2: अनीला जी, नहीं वो सेकंड वन भी,
1: अनीला जी, अनीला जी जीते,
2: सेकंड वन भी तो जीत गए।
1: हाँ, अब्दुल नूर हाशमी साहब भी जीते,
2: अब्दुल नूर हाशमी साहब भी जीत गए।
1: ओके, आरजे अली कुरैशी, द मैन विद गोल्डन हार्ट। हाय हाय अली भाई, नहीं यार, यू आर द मैन यार, जो आपने बारबेक्यू खिलाया, जो क्रिकेट खिलाई सियालकोट में, या मजा आ गया यार, क्या बात है अली भाई, आई लव यू यार, थैंक यू ब्रो, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। अली कुरैशी भी हमारे सियालकोट के आते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, इन्हें भी ज़रूर सुना करें, बड़े अच्छे आते हैं। जल्दी आपको बड़ी बड़ी आवाज़ें और सुनने को मिलेंगी। मोहसिन, एनी थिंग यू वॉन्ट टू से इससे पहले कि जिशान माइक ले लें?
2: सर मैं ये सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
1: ओके, बिल्कुल ठीक हो गया जी, डन हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। रिजवान सदीक साहब, बिल्कुल सर, आज एक आलम दीन था जिसका आपने ज़िक्र ही नहीं किया, क्योंकि फरदान अली थार पर थर पार कर सर, सर सॉरी भाई, पिशावर में ट्रांसमिशन ख़राब है सर, कर लेते हैं। ओके जी, एंजॉय द नंबर, दिस इज़ आज डॉग साइनिंग ऑफ। और जुशान नासिर अभी आपको ज्वाइन कर रहे हैं, जाना नहीं है कहीं, आपने गाना सुने उतनी देर में वो भी आते हैं, चास आएगी गाने की। हियर यू गो।

0: पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक बादशाह, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, उम्मीद दुआ है यकीन है तो डेफिनेटली आप सुनने वाले बिल्कुल फिटफाट टिप टॉप सेट को लेकर सान एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ हम मेरे यानी कि जीशान नासिर के बिल्कुल साथ साथ होंगे। आप सोच रहे होंगे कि बीजीएम चला कि जीशान कहाँ चला गया है यार, बंदा एक हूँ, काम बहुत सारे होते हैं ना। खैर जनाब, 12:11:02 जुमे का दिन शुरू हो चुका, 22 मई 2026। बात कुछ आज हमने प्रोग्राम में करना है, बहुत सारी बातें करनी है। ईद से पहले ये वाला प्रोग्राम जो है वो 101 इंटरनेशनल जो है ईद से पहले ये आखिरी प्रोग्राम है, क्योंकि इसके बाद मेरा शेड्यूल प्रोग्राम तो है सैटरडे को, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। सो अमूमी तौर पर जो मेरे सैटरडेज वाले प्रोग्राम है वो मिस हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम सैटरडे को आए। लेकिन सैटरडे को अगर हम आते भी हैं तो भी हमारा प्रोग्राम शब गप होता है, यानी कि 10 से 12 होता है, जो इंटरनेशनल है। यानी कि इस वक्त जो मैं प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहा हूँ दैट इज 101 इंटरनेशनल। हम इसको इंटरनेशनल क्यों कहते हैं? हम इसको इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं जिन लोगों ने आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, इस वक्त हम सुने जा रहे हैं कराची में, लाहौर में, पेशावर में, बहावलपुर में, सियालकोट में, गुजरावाला में, मुरीदके में, वजीराबाद में, इन शॉर्ट पूरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के साथ साथ हम सुने जा रहे हैं इस वक्त दुबई, अमान, इस्बान, अबू ज़ेबी। इसके साथ अगर हम सुने जा रहे हैं जनाब यूरोप में, खास तौर पर इटली, रोम, फ्रांस, और अगर हम बात करते हैं यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शिकागो, टेक्सास, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क एंड तमाम तर ऐसी रियासतें जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर फॉल करती हैं, हमें वहां पर सुना जा रहा है इस वक्त। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का सुनने के लिए। प्रोग्राम में बहुत कुछ हंसने को, साने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो तमाम बातें जो कि आप करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको बोर करेगा या फिर आपके वीकेंड के सीन को जो कि अभी शुरू होना है, हुआ है नहीं, उसको बोर कर दे या आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि रात 12 से 2 क्या आप कुछ बेहतर कर सकते थे। हम आपको बिल्कुल भी ये सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि जब आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आप पता क्या सोचेंगे, आप कहेंगे कि यार ये तो मैं उड़ा। वेल जनाब, आज भाई का पहला टूर रहा मवेशी मंडी का, और मैंने आज अपने वाले साहब से कहा कि यार ये ना हो अब्बा जान कि हम जो है वो ये सोचें कि जो मंडी है वो आखिरी दिनों में कुछ बेहतर रेट हमें मिलेगा, ये ना हो कि हम जो है वो आखिरी दिन जाएं और हमें पता लगे कि ना जानवर चर्च का मिल रहा है ना प्राइस चर्च की मिल रही है। सो आप क्या कहते हैं, आज अगर हम दोनों मंडी जाएं तो आपको कैसा लगेगा? अबू ने कहा बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा चले फिर चलते हैं। सो आज मैं अपने वालिद साहब के साथ गया मवेशी मंडी, और जो अभी तक की इतलात है यानी कि 12:13:22 ईद में तकरीबन अभी 6 दिन बाकी हैं, इंशाल्लाह अल अजीज 27 मई बुध के दिन को पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं जोश जज्बे के साथ ईद उल अदा मनाई जाएगी। सो यानी कि तकरीबन अभी कंपैरेटिवली अगर हम गिन चुन लें तो 5-6 दिन हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम जानवर के हवाले से बात करें तो शायद 4 दिन मौजूद हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो लाना ही होता है ना यार। अब ऐसा तो नहीं है कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद लाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं यार, ठीक है, इसमें कुर्बानी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए, वो हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी, और वो करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये एक ऐसा फरीजा है, ये एक ऐसा अमल है जो कि हम साल में एक बार करते हैं, तो थोड़ी सी उनसियत अगर आपकी जानवर से ना बन पाए तो फिर कहीं ना कहीं पर ना, मैं फिर कह रहा हूं कि कुर्बानी के सवाब और कबूलियत का तो मैं बिल्कुल भी किसी हद तक दावेदार नहीं हो सकता, मतलब ये तो ना मेरी औकात है, ना बसात है, ना ये मेरी आप कह लें कि पहुंच है वहां तक, ये तो अल्लाह पाक के काम है। लेकिन कुर्बानी का मजा तब है, चले यूं कह लेंगे कुर्बानी का थोड़ा सा मजा तब है, उसका एहसास आपको तब फील होता है जब आप थोड़ा सा जानवर से फेमिलियर हो जाए, थोड़ा सा उनसे हो जाए, 1-2 दिन उसको अपने हाथों से खिलाएं, घर में रखें, आपको ये एहसास हो, मतलब रात में आप सो रहे हैं तो आपको चाहना हो यार कोई खोल कर ले जाए, एक तो ये भी बड़ा मसला है ना आजकल, या फिर इसके अलावा यू नो आप सो रहे हो और वो क्या गाँव, तो फिर आपको पता चले कि यार आपने कुछ बांधा, वो 1-2 दिन आपकी नींद हराम हो, वो आप मेहनत करें, वो तरद्दुद करें, सुबह उठ के पट्ठे लाके आए। अच्छा, पट्ठों से मुझे याद आया, वो एक बंदे का बकरा चोरी हो जाता है, वो जाता है थाने रिपोर्ट लिखवाने, तो भाईजन मेरा बकरा चोरी हो गया, कहते क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, वो घर से जाके ना पट्ठे ले आते, कहते भाईजन ये वो पट्ठे ने जेडे मैं उन्होंने पांदा सी ये सबूत।
1: तो
0: खैर अभी तक की जो इत्तला है मंडी की, अगर हम बात करें तो जानवर बहुत खूबसूरत भाई, मैं कहता हूँ कमाल। मतलब मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मजीद बरकत अता करे, माशाल्लाह जरूर कहिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं लगते तो नहीं है, लेकिन प्लीज माशाल्लाह कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल मेरी उम्र है, और 32 साल की उम्र में मैंने जितनी भी ईद उल अज़हा मनाई है और मवेशी मंडी जो है उनका रुख किया, मैंने कभी इतने खूबसूरत जानवर इतनी ज्यादा तादाद में नहीं देखे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये जो एक ग्लोबल क्राइसिस इस वक्त चल रहा है और बॉर्डर्स बंद हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वहां से भी कोई इतनी खास ट्रेड नहीं हो रही है, ईरान का बॉर्डर जो है वो भी चुके हैं, उनकी जो ग्लोबल एक क्राइसिस चल रहा है, वॉर सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से मामला थोड़े से डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से बहुत सारा माल जो है वो वहां नहीं जा पाया है, जिसकी वजह से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का माल है, चाहे वो हम बड़े जानवर यानी कि बैल की बात करें, ऊंट की बात करें, या फिर हम छोटे जानवर जिसमें छतरे दुम्बे या बकरे की बात करें, तो बहुत अच्छे जानवर मौजूद हैं। खास तौर पर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, जो लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो भाई भाटा चौक के ऊपर जो मंडी लगी है आज मैं वहां पे मौजूद था, फिर उसके बाद I-12 में जो मंडी है वहां पर भी हम गए, दोनों मंडी आज हमने विजिट की है। सो जो भाटा चौक है वहां पे जानवर बेहतरीन, खूबसूरत, और प्राइस डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू जानवर अगर आप देखें ना तो ठीक है। अब जैसे मैं मिसाल देता हूं, मतलब मैं अपने वाले साहब को ये समझा रहा था कि अब्बू आप ये देखें कि यही कीमत हम पिछली दफा जिन जानवरों की देते थे वो ठीक थे, मतलब अच्छे होते थे, लेकिन देखें कितने मजेदार, कितने नस्ली और कितने खूबसूरत जानवर हैं, ये वाली लॉट हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी। तो अबू ने कहा यार वाकई बात तो आप ठीक कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा था कि फर्ज करें कि अगर एक बकरे का 170,000 या 180,000 रुपए मांगा जा रहा है, तो पिछले साल भी 150, 140, 130 ही मांगा जाता था, लेकिन वो बकरा नस्ल के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, वजन के हवाले से ऐसा नहीं होता था, वो इससे बहुत कम होता था। लेकिन अब देखें अगर फॉर एग्जांपल 10-15 हज़ार ऊपर मांगा जा रहा है, लेकिन चीज अच्छी दी जा रही है, तो इट मींस कि उसको कंपेयर करें तो फिर काफी अच्छे रेट्स हैं। लेकिन जाहिर है 170, 180, 190 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लोग डेफिनेटली जो है वो देख रहे हैं कि यार उनको किस तरह कुर्बानी करनी है, और आज तक की इत्तला के मुताबिक खरीदार इतना नहीं था मंडी के अंदर। अब उसकी 2 से 3 वजूहात हो सकती हैं, एक वजह जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार महंगाई बहुत ज्यादा है तो शायद लोगों की कुव्वत खरीद अब उस तरह नहीं है, एक वजह डेफिनेटली हो सकती है। दूसरी वजह जो है जो कि मुझे लग रही थी वो ये थी कि चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो लोग घबरा भी रहे हैं कि यार बहुत पहले ले लेंगे, अभी 5-6 दिन पहले ले लेंगे, ये ना उसको गर्मी लग जाए, बीमार हो जाए, जानवर है ना, तो 1-2 दिन पहले या 2 दिन पहले लेकर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये एक वजह भी हो सकती है, लेकिन जाहिर है प्राइसेस का बढ़ जाना, थोड़ी सी इन्फ्लेशन होना, महंगाई होना, ये भी अपनी जगह बातें दुरुस्त हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि क्या ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, क्या कुर्बान करें इस वक्त। इस दफा मैं अपनी अना कुर्बान, लेकिन जाहिर है प्राइसेस का बढ़ जाना, थोड़ी सी इन्फ्लेशन होना, महंगाई होना, ये भी अपनी जगह बातें दुरुस्त हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि क्या ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, क्या कुर्बान करें इस वक्त। इस दफा मैं अपनी अना कुर्बान कर रहा हूं।

40,000 महंगा भी है, लेकिन देखो एक 30 वाला वजनी है। तो एक चीज याद रखिएगा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम्हारे जानवर का ना गोश्त मुझ तक पहुंचता है ना खून पहुंचता है, मेरे पास तुम्हारी नियत पहुंचती है। तो सबसे पहले आपका अगर एक 30 का है या एक 50 का है या 2,50 का है, प्लीज कभी भी उसको कंपेयर ना करें किसी और के साथ। और याद रखिएगा कि जो कुर्बानी का जानवर होता है वो वजन के हिसाब से नहीं देखा जाता है, उसकी खूबसूरती के भी पैसे होते हैं, हो सकता है समटाइम। और जो मेरा आप कह लें कि इसके बारे में एक हम्बल ओपिनियन है या जितना मैंने स्टडी किया है इस्लाम को, कुर्बानी का जो एक कह लें कि फिनोमिनन है वो यही है कि फॉर एग्जांपल एक जानवर है जो कि 1,70,000 रुपए का है और एक जानवर है जो 2,00,000 रुपए का है, वो 1,70 वाला बेशक भारी हो, 10-15 किलो गोश्त उसमें ज्यादा हो, और वो जो 2,00,000 वाला है उसमें चाहे गोश्त कम हो लेकिन वो देखने में खूबसूरत है, जवान है, प्यारा है, तो आप उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, आप बेहतरीन चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, खूबसूरत चीज देंगे अल्लाह की राह में। सो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो जब आप कुर्बानी का जानवर देखें तो डोंट गो फॉर द गोश्त। हाँ, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव जरूर हो सकता है कि आप इस ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ सोच रहे हैं कि यार जितना ज्यादा गोश्त होगा उतने ज्यादा गरीबों में बटेगा या रिश्तेदारों में बटेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कुर्बानी का जो पहला एसेंस है, आप अल्लाह की राह में एक चीज कुर्बान कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, तो उसमें 10-15-20 किलो गोश्त से बेहतर है कि आप वो चीज कुर्बान करें जो खूबसूरत है, देखने में खूबसूरत है, प्यारी है, बेऐब है। और आगे चल के मुझे याद करवाइएगा वो तमाम तर लोग जो कि कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन खबर है। आपने टेंशन नहीं लेनी यार, भाई है ना आपके यहाँ पर, तो आपने मुझे याद करवाना है। जिशान, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी। खैर, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त कलाम, इस कलाम को सुनते हैं, लौट कर आते हैं। बहुत सारी बातें आज मैंने आप लोगों से करनी है, बहुत सारी कॉल्स आज आप लोगों की लेंगे, बहुत सारा जिक्र अज़कार करेंगे, बहुत सारी ईद के हवाले से बात करेंगे, और भी बहुत कुछ होगा। और हाँ, ये होगा, ये होके रहेगा। अरे यार, वो मैंने तो बल्कि वो लगाया था यार, वो तो मैंने सॉरी यार, गाना लगाया, मैं तो बात ही करता रहा, गाना तो चले नहीं। गाना सुनते हैं फिर कलाम की तरफ आएंगे। सो मैं आपसे ये कह रहा था, बात जहां से चली थी, जहां से मैंने गाना प्ले किया था, कि अगर आप मुझे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अरे मैं उड़ा। जमीन और आसमान के दरमियान कहीं पर इस वक्त आप मौजूद होंगे। दिस इज FM 101 इंटरनेशनल, चैनल का नाम FM 101 चैनल पाकिस्तान है। मेजबान जिसकी आवाज आपकी समातों से टकरा रही है, मेरी आवाज को अपनी समातों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बंदा नाचीज को जीशान नासिर कहते हैं।

लाहौरियो लाहौरियो किधर हो लाहौरियो लाहौरियो हाथ खड़ा करो यार, तुम्हारे शहर में एक बहुत ही बेहतरीन इजाफा होने वाला है एज फार एज द रेस्टोरेंट्स आर कंसर्न, एज फार एज द कैफेज आर कंसर्न, एक बहुत ही बेहतरीन इजाफा होने वाला है बहुत बहुत बहुत जल्द। एंड गेस व्हाट, कौन आ रहा है इसको होस्ट कर रहे हैं, कौन आ रहा है होस्ट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं ना।

बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब तो हम प्रोग्राम भी हफ्ते में एक करते हैं यार, कि तुम लोग थक ना जाओ कमेंट करके। हाँ हो कि नहीं हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, भाग रहे हो, क्या कर रहे हो यार? या एंजॉय कर रहे हो, सिट बैक रिलैक्स, फोन पिक नहीं करना चाह रहे, सिर्फ हमें सुनना चाह रहे हो, आप सिर्फ जो है कॉफी एंजॉय करना चाह रहे हो, टी एंजॉय करना चाह रहे हो, क्या चाह के रहे हो तुम? अबे चाहिए क्या तुम लोगों को? 0511111001 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन 0511111001 0511111001 ये मेरे और आपके रابطे का नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे कॉल करेंगे। कॉल मी हारा।

0: 1, 2, 3, 4.
1: कॉलर कौन है हमारे साथ, कहां से? हेलो,
2: वालेकुम सलाम, मोहम्मद शहजाद शाहबाल होते आपके साथ।
1: अरे क्या बात है सर, आपकी कैसे हैं? आप ठीक हैं?
2: आपकी दुआएं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, खुशी हो जाती जब आपकी बात सुनते हैं ना।
1: अच्छा,
2: बहुत अच्छा महसूस होता है, दिल में खुशी हो जाती है।
1: ऐसा महसूस होता है,
2: ये आपको बता रहा, आपने क्या आज करते करे तो नंबर कैसे मिलाए थे, इसलिए मैं खुशी से दूसरे हाथ से मिला जाए।
1: अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और सुनाए सर, लाहौर में ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये बताएं। छोड़े
2: हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तैयारी हो रही, महंगाई बहुत है जी। मेरे घर वाले कह रहे बकरा ले आओ, तो इतने पैसे नहीं हो रहे, तो मैं खुद बकरा बन गया।
1: हाय हाय,
2: मैं खुद ही मैं करता रहता हूँ, तो उसको थोड़ा चलो आ जाएगा।
1: आपकी कुर्बानी होगी नहीं ना सर, मसला ये है।
2: ये मेरी कुर्बानी नहीं, वो घर वाले कह रहे थे
1: कुर्बानी बेऐब जानदार की होती है
2: तो भाई इसलिए आपको बहुत बहुत सलाम है मेरा, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका शोर होता है, आपका इंतजार होता है, और सब भारतीय को मेरा सलाम, बहुत बहुत जी, बहुत सलाम,
1: बहुत शुक्रिया जी। और मुझे ये बताइए सर कि वैसे ईद का प्लान क्या है आपका? चले कुर्बानी तो इन एनी केस करनी है, इंशाल्लाह जरूर आप कीजिएगा। और मुझे ये बताएं कि वैसे ईद का क्या प्लान होता है, यौमे ससुराल मनाते हैं आप?
2: ईद का हम तो देखें जी, वन वन के साथ जुड़े हुए हम, हर ईद जो है ना स्टूडियो में जाते हैं, लाजमन जाते हैं, छोटी ईद को भी गए थे और सालगिरह पे गए थे, और इतनी इज्जत दी थी आरजीओ ने, बहुत इज्जत दी
1: तो थी।
2: हमारा जी यही होता है, ईद वाले दिन हम स्टूडियो लाजमन जाए।
1: सही बात है, सही बात है।
2: लाहौर में और इतने हमारे डॉग्स जो असर साहब इतना मोहब्बत प्यार करते
1: हैं, बस मोहब्बत बहुत करते हैं,
2: अल्लाह ताला इनकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे।
1: हमारी मोहब्बत वो खुद मोहब्बत है, ऐसा ही है ना, मोहब्बत करते नहीं है वो, खुद मोहब्बत का मेंबर है वो
2: जी। मोहब्बत की क्या बात है जी, सबसे बड़ा जो मोहब्बत है ये बड़ा।
1: आजकल के दौर में कोई मोहब्बत है, ये बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है।
2: आप भी आए ना किसी दिन, आपको श्री पाई खिलाए।
1: सर मैं आया था, मेरी असल में आदत है, मैं थोड़ा सा फकीर आदमी हूँ, मैं चुप करके आता हूँ, चुप करके वापस चला जाता हूँ।
2: नहीं जी, श्री पाई नहीं खाते, आपको चिकन चने खिला देंगे, आप आए तो सही।
1: सर मैं बोंग पाई खाता हूँ, मुझे किसी ने ना बोंग पाई खिलाए थे सुबह 5-6 बजे कहीं से,
2: बस वो खिलाएंगे।
1: मुझे और उन्हें 5 बजे बुला लिया था, खुद वो 7 बजे आए थे, तो खैर बहरहाल अच्छे थे बॉन्ग।
2: क्या बात,
1: चले खैर है, कोई बात, बड़ी बात है जी, बड़ी बात।

0: अच्छा जी, सो ईद पे यौमे ससुराल से मुराद, अगर आप लोग मेरी तरह जो है वो जाहिर है इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो यौमे ससुराल से मुराद ये होती है कि ईद के दूसरे दिन गालिबन सब लोग अपनी बीवियों को लेके उनकी वालदैन के घर जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बड़ी अच्छी रवायत है। और अच्छा, ये भी ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अच्छे दामाद हों, एक आप ऐसे दामाद हों कि आप जब अपने ससुराल जाएं तो सब खुश हो जाएं, आपकी सासू माँ खुश हो जाएं, आपके ससुर जो है वो खुश हो जाएं, आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो सिस्टर्स इन लॉ हैं, वो सारी खुश हो जाएं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो जाएं तो वो अपनी बेटी को अगले कह रहे होते हैं, बेटा तुम्हें कितनी दफ़ा आया करो तो उसको घर में छोड़ के आया करो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो महानूर फातिमा, क्या हाल है, क्या हुआ महानूर, क्या हो गया?
1: आप?
0: मैं बड़ा अच्छा हूँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत अच्छा हूँ,
1: बिल्कुल ठीक। अच्छा,
0: करम है जी, मालिक का बड़ा एहसान है, करम है, मालिक का बड़ा एहसान है। आप सुनाइए।
1: वो तो मैं पता है, बहुत अच्छा है।
0: आप कंफ्यूज क्यों हो रही हैं इतना? आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो।
1: नहीं, मैंने क्यों कंफ्यूज है ना, तो अभी
0: आपकी वो जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा ना, आप एक जुमला बोलती हैं तो सांस चढ़ जाता है, भागते भागते बात कर रही हैं। देखा, ये होती है कंफ्यूजन की निशानी कि आपका जहन कहीं होता है, आप सोच रहे होते हैं मैं ये बोलूं ना बोलूं, और ये होता है। अच्छा मुझे बताएं, आप कर क्या रही हैं लाइफ में, पढ़ती हैं, क्या करती हैं, जॉब करती हैं, क्या करती हैं?
1: एफए किया है और अभी फ्री।
0: अच्छा, एफए करने के बाद क्या थक गई हैं, इतना पढ़ लिया आपने?
1: बस थक गई।
0: एफए तो कुछ भी नहीं है बच्चे, एफए तो कुछ भी नहीं है, और आजकल के दौर में तो कुछ भी नहीं है, पढ़ो आगे पढ़ो, ठीक है?
1: मैं ना बताएं क्या,
0: हाँ
1: आज आपकी विश पूरी करने आई हूँ।
0: मेरी विश पूरी करने आई है? मेरी विश तो कोई नहीं पूरी कर सकता।
1: तो मैं कर सकती हूँ आज।
0: अच्छा चलें करें।
1: आपको सॉन्ग डेडिकेट करूंगी।
0: अच्छा मुझे सॉन्ग दे, अच्छा ये विश मैं पता नहीं वो वाली। अच्छा जी प्लीज गो अहेड। मैंने कहा शायद वो एक होता ना कि गिफ्ट शिफ्ट वाली। अच्छा खैर आप बताओ। हाँ जी जी जी, मैं बिल्कुल, आप सुनाइए, जल्दी सुनाएं, जल्दी सुनाएं, बहुत स्लो है साबुन आपका, जल्दी करें।
1: छोड़ सारे जग को ततर साडे नाल, म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ, रख सोने फुला वाली शाल, इक कोलो इक वंद पवे बाना, जाने तेरा खर्चा ते
0: मैं, क्या बात है, वेरी नाइस।
1: जाने तेरा खर्चा ते मैं जाना,
0: कहंदे छोड़ सारे जग नु ते टुर साडे नाल, छोड़ सारे जग नु
1: फुला वाली शाल, इक फुलो इक वद पवे बाना,
0: जाने तेरा खर्च
1: जाते मैं जाना।
0: अच्छा मुझे मुझे मुझे मुझे एक बात बताओ,
1: काट ना खरी, रोज शब रात होनी रोज होली, रोज वदा बोस कीते काट ना खरी,
0: पैसे तू दे,
1: रोज शब रात होनी रोज होली, फिर वदा कलीना ते जोड़ वाला को, मोड़े उत्ते रख सोने फुला वाली शाल, इको कोलो इक वद पवे बाना,
0: जाने तेरा खर्चा ते। अच्छा बाड़ा किसको कहते हैं ये तो बताओ पहले, बाड़ा किसको कहते हैं?
1: जोड़ा सूट।
0: हाय हाय, जबरदस्त, गुड यार, चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, बाय। By the way, मैं गाना जो है वो ढूंढ रहा था कोई और, वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो फिलहाल इसी से गुजारा कर लेते हैं। जो मैं ढूंढ रहा था वो था समथिंग लाइक हे आखन

खा पई तेरे ते अखियां से खा पई। कभी ऐसा हुआ है आप किसी को देख रहे हो और दिल ही दिल में ये कहें वल्ला?

अल झगड़े लाला थक गया। वेल जनाब, ठीक, इस गाने के साथ साथ आप लोगों के फेसबुक के ऊपर कमेंट्स शामिल करेंगे।

अख सुरमीली ढोला ओके जी कमेंट्स हम शामिल करते हैं। माहीन अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ पे जैनब कमेंट करें, शुमाइला जावेद, अस्सलाम वालेकुम जिशान, कैसे हैं आप फ्रॉम इस्लामाबाद, आज इतनी एनर्जी खैर है माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला। आयशा बासी हमारे साथ हैं, हिना प्रिंसेस हमारे साथ हैं, खतीजा आरिफ हमारे साथ हैं, आयशा मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, आकाश हमारे साथ मौजूद हैं, राजा जुलकरनैन क्यानी हमारे साथ हैं, रमजान अली रमजान हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक मौसन हमारे साथ हैं, मुश्तफा मोहम्मद हमारे साथ हैं, तुबा अली हैं, हुरिया मलिक हैं, लाइबा अली हमारे साथ मौजूद हैं, और आज अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे लाइबा का आज बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।

Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. केक बनता है यार, केक बनता है यार, केक बनता है यार, केक बनता है इस पे यार। इतना अच्छा विश मैंने किया है, केक बनता है यार।

0: मसला हो गया भाई, बहुत शदीद मसला हो गया। मसला ये हो गया, मुझे बड़ी शदीद भूख लग गई क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने दोपहर में खाना खाया था तकरीबन 4 बजे, और मुझे बहुत शदीद भूख लग गई। तो प्रॉब्लम ये है कि अब वो लॉकडाउन वाला ख़त्म हो गया ना यार इस्लामाबाद में, कि है अभी भी। यार मंगवाओ, यार मंगवाओ, खाना मंगवाओ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो हेलो,
1: कौन?
0: वालेकुम, कौन? हेलो कौन? हेलो कौन? हेलो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तुमने किसको कॉल किया रात के 12 बजे? कौन बात करे? किंजा, किंजा, तुमने रात को 12:40 पर किसको फोन किया है? हाँ हाँ नहीं, कोई मसला नहीं, कोई को टेंशन वाली तो बात। देखें, टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में, कभी भी टेंशन नहीं लेनी आपने, और कुछ लेना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, और
1: मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: कितनी बड़ी फैन है। आजकल तो गर्मी भी शुरू हो गई, अब फैन से गुजारा नहीं होता, एसी होना चाहिए तुम्हें। बस देख लें, इसका मतलब ये है कि डॉक्स लगी हैं आपके, डॉक्स के प्रोग्राम में कॉल लगी है तो मेरे प्रोग्राम में भी लग गई है ना। अच्छा, और सुनाए।
1: आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
0: मेरी डेट ऑफ बर्थ जी, मैं जी 28 अगस्त 2009 हैं। आपकी भी 28 अगस्त है? अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी ईयर क्या आगे? मेरा तो 2009 है ना, 2009 पैदाइश है मैं। हाँ, क्या है, क्या मतलब?
1: मेरा 2009 है।
0: आपका भी 2009 है, हम एक ही दिन पैदा हुए दोनों। अब देखें, ये बात ना कीजिएगा कि मैं अब आपको हॉस्पिटल बताऊं, आपके मैं भी सेम हॉस्पिटल पर, मैं आपको वार्ड बताऊं, आपके सेम वार्ड पर, मैं आपको कहूं सेम बेड पर, ये ऐसे ऐसे नहीं नहीं मैं 2009, आप यकीन करें। मेरा देखिए, इंसान के बहुत सारे जन्म होते हैं ना, एक जन्म उसका दुनिया में होता है, फिर उसका तखलीकी जन्म होता है। तो ये बात है ना, मेरा तखलीकी जन्म बहुत बार हुआ है जिंदगी में, ट्रस्ट में। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ ना, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अदर डे आई वॉज जस्ट क्लीनिंग माई अनमारी ना, तो मैं वो घड़ियों वाला मेरा एक ड्रॉयर है, तो मैं उसको हटा के साफ कर रहा था उस ड्रॉयर को। तुम्हारे पास बैलेंस है, मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारी कॉल कट जाएगी। चलो तुम कॉल कर लो, पहले बात कर लो, फिर मैं ऑन एयर बात कर लूंगा। अभी तुम्हें इतनी देर होल्ड पे क्यों रखूं? हाँ बोलो। लाहौर क्या करता हूँ मैं?
1: लाहौर में आपने एक शो किया था, आपको याद हो रिसेंटली?
0: जी जी, मैंने बिल्कुल किया। मैं अभी रिसेंटली दोबारा लाहौर आ रहा हूँ, इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद मेरा एक इवेंट है लाहौर में, इंशाल्लाह।
1: तो
0: मैं बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू। चलो अपना ख्याल रख, अब तू इधर उधर की बातें शुरू कर दी तूने। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। वालेकुम अस्सलाम।
2: पूरे कराची में जीशान नासिर साहब एक सैयद इफ्तिखार अली हैं जो आपके फराख में जगते रहते हैं।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय सर, फिर देखिए आपके आने पर ना, आपके आने पर मैंने एक कलाम लगाया, आप जरा मेरे साथ रहे। बैलेंस है ना आपके पास?
2: बिल्कुल है,
0: आपके आने पर मैंने ये लगाया, जरा सुनिएगा।
3: ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं, यार बिना

पांव पत्थर पे भी पड़े तो धूल उठती है। तू नहीं मानता तो रक्स करके धिकाऊं तुझको। पांव पत्थर पे भी पड़े तो धूल उठती है। तू नहीं मानता तो रक्स करके दिखाऊं तुझको। तू नहीं मानता इंसान का फना हो जाना, अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। दुआ करो यार, दुआ करो तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे नसीब में किसी फकीर का साथ हो यार। और ये फकीर का ताल्लुक औरत होने से या मर्द होने से नहीं है, ये फकीर एक कैफियत है। दुआ करो यार, आज की रात दुआ करो, रात का आखिरी पहर है, खुदा नजदीक है। वैसे तो वो शारक के करीब है, हर दफा हर लम्हे करीब है, लेकिन कुछ ऐसे लम्हात है जिनमें खुदा खुद फरमाता है मैं चौथे आसमान पे मौजूद हूँ। बार बार ये कह रहा है, मांग लो यार, खुदा तुम्हारे नसीब में फकीर कर दे यार, फकीरी साथ ढूंढ लो यार। और ये मजा जो है ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना, बड़े बड़े महलों में, और कोई तो मैं नहीं कह रहा कि जिंदगी की आसाइशें छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ रास्ता लंबा इख्तियार करना पड़ेगा। लालच नहीं होनी चाहिए दिल में, कुछ ना भी दुनियावी तौर पर मिला तो ना सही। नजफ का जर्रा ना दू मैं कुल कायनात के बदले, नजफ का जर्रा ना दू मैं, नजफ का जर्रा ना दू मैं कुल कायनात के बदले, पूरी कायनात न लू मैं दर्रे अबू तुर्राब के बदले।

0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो,
1: सलामत रहें, सलामत रहें।
0: जनाब कौन बात कर रहे हैं, नाम बताइएगा।
1: अब्दुल गफूर अनारकली लाहौर से बात कर रहा हूँ।
0: जनाब क्या कहना चाहेंगे, हुक्म कीजिए।
1: हुक्म हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, फकीरी की जैसी है कि अंदर से तन मन को जो है ना पूरा जो है दलाल में बंदा आ जाता है।
0: भाई भाई
1: वो दुनियादारी नहीं देखता, तन मन उसका सारा उसी में ही होता है।
0: सलामत रहे,
1: उसकी रजा में मौला, उसी की रजा में थे।
0: सलामत,
1: अल्लाह तेरी रजा है तो मेरी रजा है,
0: ऐसा ही।
1: और ऐसी दुनिया से ये शहादत का सिलसिला चलता रहेगा।
0: वाह वाह वाह।
1: और ये इब्राहिम अलैहि सलाम का जो ये चल रहा है आज का 8,000 साल पुराना है, देखो कि अल्लाह पाक ने उनसे भी कुर्बानी ली।
0: ऐसे ही
1: इब्राहिम अलैहि सलाम से तो आप पूछ रहे हैं अल्लाह की रजा है तो हमें नहीं छोड़ेगा।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: बेटा बोला हुआ अल्लाह की रजा है तो हमें नहीं छोड़ेगा।
0: आप ये देखें, आप ये देखें कि बेटे ने
1: इस्माइल अलैहि सलाम और जम आबे जम जम आज तक आबे जम जम सफाए मरवा वही सुन्नत हो रही है, वही कुर्बानियाँ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की, वही हज के 8,000 साल।
0: इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें सुने सुने सुने मेरी बात सुने सुने
1: बता बता।
0: अच्छा वो आपने बड़ी बेहतरीन बात की है तो मेरे जहन में कुछ मामलात आए मेरे जहन में। अब देखें, हम जाते हैं हज पे गए, उमरे पे गए, तो सफ़ा मरवा पे खुदा ने हुक्म दिया है कि आपने दौड़ना है।
1: सही है,
0: ठीक है। अब इंसानी सोच हो, इंसान सोचे कि या बारी ताला, मैं इतनी मेहनत करके इतने पैसे जोड़ के यहाँ पर पहुंचा, मुझसे नमाजें पढ़वा काबे के सामने, मुझसे कुरान पढ़ा काबे के सामने। आप समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं समझ रहे?
1: तो
0: अल्लाह आपको हुक्म दे रहे हैं आ गए हो, बेहतरीन, नमाजें उतनी ही पढ़ोगे जितनी वहां पढ़ रहे थे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर हज पे पहुंच गए हैं या उमरे पे पहुंच गए हैं तो आपने 6 पढ़नी है या 7 पढ़नी है। अल्लाह ने कहा नमाजें वही पढ़ो जो रूटीन से पढ़ रहे थे, और उतनी रकातें पढ़ो जो रूटीन से पढ़े। सुनिएगा मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुन ले आपको समझ में आए मेरी बात, और जो सुनने वाले हैं उनको मेरी बात समझ में आए। पता नहीं दोबारा आप कब सुनेंगे, मैं कब बोलूंगा, मेरा बोलना आखिरी हो, आप लोगों का सुनना आखिरी हो। सुने मेरी, समझे मेरी, मेरी मेरी समझे मेरी बात समझ ले मेरी बात समझ। देखिये नमाजें आप वहां पहुंच गए, अल्लाह ने कहा भाई 5 ही हैं, जितनी घर पढ़ रहे थे उतनी मेरे पास भी हैं, रकात उतनी ही है जितनी घर पढ़ रहे थे उतनी, जितनी मेरे पास पढ़ो उतनी ही है। आप अल्लाह से कहें अल्लाह मैं इतने पैसे जोड़ के यहाँ पे, मेरे से नमाजें पढ़ा, इबादत करवा, ये दौड़ाना क्यों? तो खुदा ताला फरमाएंगे कि यहाँ पर एक शख्सियत थी जो मेरे लिए दौड़ी थी, और अगर यहाँ पर लोग ना दौड़े तो वो भूल जाए।
1: बिल्कुल सही है,
0: ठीक है, साबित। अरे यार मेरी बात नहीं पहुंच रही, चले मैं ऑन एयर इस पे बात करता हूँ। आप कुछ और कहना चाहेंगे?
1: नहीं नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा आपको सलामत रखे। यार मेरी बात सुनो, देखो देखो अब समझो मेरी बात को। एक तो आप लोग पता नहीं शायद सो रहे हैं, मुझे हाँ ना करते रहा करो ताकि मुझे पता चले मेरी मेहनत वसूल हो रही है कि नहीं। बात यह है कि मैंने बता दिया कि आप वहां पहुंचे तखयल की दुनिया में, वैसे तो अल्लाह जो हुक्म करे, लेकिन तखयल की दुनिया में आप अल्लाह से कहें अल्लाह मैं इतनी दूर से आया, पैसे लगाए, मेहनत की, घर बार छोड़ा, बच्चे छोड़े, हज पे आ गया, ईद अपनी जो है परदेश में कर रहा हूं, तो कुरान पढ़ावा लीजिए मेरे से, तस्बीहात करवा लीजिए, नमाज पढ़वा लीजिए। अल्लाह कह रहे नहीं, वो सफा मरवा वहां दौड़ो। क्यों दौड़े हैं बारी ताला? यहां पे मेरे प्यारे थे जो दौड़े थे मेरे लिए, मैं चाहता हूं कि वो अमल याद रहे, वो अमल याद रहे, क्योंकि यहां पे कुछ अरसा कोई ना दौड़ा तो ये अमल भुला देंगे लोग। तो बस साबित फिर ये हुआ, खुदा जिस अमल को महफूज करवाना चाहता है उसको बार बार रिपीट करवाता है। अब समझ में आया कि हर साल लब्बैक लब्बैक लब्बैक या हुसैन की सदाएं क्यों आती हैं। ये अल्लाह का निजाम है कि वो कायनात में जिक्र किसका और कैसे महफूज करना चाहता है।

किस ख्याल में घूमे? मैं जानता हूँ जो बाज़ौक लोग हैं या जो तारीख पढ़ना चाहते हैं या जिनको बहुत सवालों का सामना करना पड़ता है हर साल ही, आज कोई जवाब वो लेकर उठे हैं यहाँ से। समझ में आया है हर साल क्यों लब्बैक लब्बैक है?

लिए हैं, 50 बिलियन, और वो इसी तरह सबको दूध डालते रहे तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी तो पूरी तनख्वाह वो उसका इदारा काट लेगा कि भाई तुम बिलियां पालने के लिए यहाँ पे तो नहीं खड़े। अभी बात सुनने में थोड़ी अनसेंसिटिव भी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये दुनिया में कहीं पर नहीं होता है, दुनिया में कहीं पर नहीं होता है। सो आप क्या कर सकते हो अब यहाँ पे, हमें करना क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बच्चों को एजुकेट करें। छोड़ो यार ये स्ट्रे डॉग्स वगैरह को, आपके कुर्बानी के जानवर आते हैं, आपके बच्चे उसके साथ क्या हाल कर रहे हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई। कराची में जो लोग सुन रहे हैं प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं आज भी अपने वाले साहब से बात कर रहा था, मैंने इससे ज्यादा बेहुदा चीज अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि जो कराची में कॉन्सेप्ट है कि लोग पहले बच्चा लाते हैं बैल का और उसको छतों में पालते हैं और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको क्रेन से नीचे उतराते हैं और पूरा कराची जो है वो इकट्ठा हुआ होता है मंजर देखने के लिए, और 2-4 दफा वो बैल गिरा भी है उस क्रेन से। ये इतनी अजियतनाक चीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई स्ट्रे डॉग्स या कैट्स की तो बात की बात है, कुर्बानी के जानवरों के साथ आपका ये उठन मामलात हैं तो फिर बंदा क्या कहे। तो आप सबसे पहले तो अपने बच्चों को एजुकेट करें जानवरों से प्यार करने के हवाले से कि बच्चों इनको पत्थर नहीं मारना है, इनको तंग नहीं करना है, इनको पाँव से ठुड्डा नहीं मारना है। आप क्या कर सकते हो, अपने घर से दूध लाओ, रोटी लाओ, इनको डालो, खिलाओ, सब कुछ करो। अब ये एक्चुअली कहने की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं बताते हैं। आई ऑलवेज कीप द कैट फूड विद मी इन माई कार। आप कभी अगर रैंडमली मुझे मिले, मेरी गाड़ी का अगर आप ट्रंक उठाएंगे, पिंडी में एक बंदा है जो कि होल सेल रेट पर इसको बेचता है, वही फिर पैक होके ब्रांड जो है उसमें अपना लोगो लगा के बड़ा महंगे दामों बेचते हैं। पिंडी में एक बंदा है जिसको होल सेल रेट में बेचता है, मेरी गाड़ी में मोस्टली ये होता है। एंड वेन एवर आई गो, मोस्टली बल्कि मैं आपको बताऊं, जहाँ पर मैं घर पे, घर की बैक साइड पे बेसिकली हमारी एक मार्केट है, तो वहाँ पे ना 3-4 डॉग्स वगैरह होते हैं। आप ट्रस्ट मी कि अगर मैं पैदल भी कभी वहाँ चला जाऊँ ना कुछ लेने, तो वो पहचान लेते हैं, इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करूँ, ये कोई बहुत बड़ा काम है भी नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन चूंकि मैं लेक्चर दे रहा था तो मुझे याद है कि चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अदरवाइज ना ये किसी पे आसान है, ना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा मैं कर रहा हूँ। मैक्सिमम 3 या 4 हज़ार रुपये किलो मिल जाता है वो आपको, ये जो आपको फिर 10-12 हज़ार रुपये किलो ब्रांड का लोगो लग के बड़ी बड़ी शॉप्स में मिलता है, ये आपको पिंडी में एक बंदा है जो किलो के हिसाब से बेचता है, 3-4 हज़ार रुपये किलो, 1.5 किलो जो है वो दे देता है। गेटिंग माय पॉइंट, अगर आप 1-1.5-2 किलो ले लें, बल्कि 3-4 हज़ार भी ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, शायद 2-2.5 किलो 3-4 हज़ार का देता है, कॉलेज रोड पे है। सो जो लोग पिंडी से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा कॉलेज रोड है ही बेसिकली एनिमल्स और बर्ड्स की मार्केट है। सो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 2 हज़ार रुपये का भी ले लें, 1-1.5 किलो आ जाता है और वो रख लें, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी डालें तो कम से कम आपका 22-23-24 दिन तो कहीं नहीं गए, ठीक है। बजाय इसके कि आप जो है वो जो यू नो बेचारे काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप जो है उसमें उनको डिस्टर्ब करो, ऐसे गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो ये आप एक्टिविस्ट भी हैं, जो भी हैं, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट ऑन। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ना मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो ये आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार मैं लोगों के साथ ये शेयर करूँगा, कभी कभार ऐसे कर लिया करें। आप फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि जिशान भाई आपने कहा था कि एक सिफ्त अपने अंदर ज़रूर बना ले, और वो एक खाना खिलाने की सिफ्त, ये ऐसी सिफ्त है जो आपको फ़कीर से बादशाह बना देती है, और ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप मेरे से कोई एक अमल ऐसा पूछें जिससे मुझे लगता है कि खुदा ताला के करीब तरीन बंदा कैसे पहुँचता है, देखें बहुत सारी वेज़ हैं कि आप खुदा के करीब पहुँच सकते हैं, उनमें तस्बीहात भी हैं, उनमें ज़िक्र अज़कार भी हैं, उनमें नमाजें भी हैं, इबादात भी हैं, रोज़े भी हैं, सब कुछ है, उसमें हकूकुल इबाद भी हैं, जानवरों से प्यार भी है, हर चीज़ है। लेकिन आप अगर किसी को खाना खिलाते हैं तो मुझे लगता है अल्लाह आपसे बहुत खुश होता है, कुर्बत जल्दी मिलती है खुदा की, मुझे ऐसा लगता है। और यही वजह भी है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए पहली वही नाजिल होने के बाद, अल्लाह ताला कहता है कुरान अगर मैं पहाड़ पर उतारूँ तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाए, ये नबी का दिल है जिस पर कुरान उतरा है, कुछ छोटी बात नहीं है। सो रसूल अल्लाह की तबीयत ख़राब थी, तो बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उनको यही फरमाया ना, यही कहा था कि आप गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो देखें कितनी बड़ी बात है, तो इसका इफेक्ट कितना है। उनको ये बात याद दिलवाई जा रही है बीबी की तरफ से कि आप देखें गरीबों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह आपको बेआसरा और मददगार नहीं छोड़ेगा। सो इसका तरीका यह कि आजकल फूड ऐप्स बहुत आ रही ना, कि आप ऐप्स के थ्रू फूड मंगवाते हो, इसका बड़ा सिंपल है, आप कभी अपनी हैसियत के मुताबिक 200-250 रुपये की कोई चीज़ ऑर्डर करो, हो जाती है, अंडे वाला बर्गर आ सकता है, वो बिरयानी कराची स्टूडेंट बिरयानी की प्लेट आ जाती है, और चने आ जाते हैं, नान आ जाता है, 250-300 रुपये का ऑर्डर करो, और जब वो आपका ऑर्डर पिक कर ले राइडर, तो उसे कहें कि अपना इजी पैसा भेजें, वो आपको इजी पैसा भेजेगा, उसको इजी पैसा में वो अमाउंट भेजें, और साथ ही उसको मैसेज कर दें कि भाई मैंने पैसे पे कर दिए, खाना आपके, आप खाना खा लो, सिंपल।
खास तौर पे ये खवातीन

गया है, अगर आप अनसेफ फील करें बाहर करते हुए तो ये आप कर सकते हो, घर में बैठे बैठे हो जाएगा। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, ना आपको होटल जाके खाना खरीदने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है, सब कुछ हो जाता है मेरी जान, नियत होनी चाहिए। सो आई होप कोई सेंसिबल बात की होगी मैंने।

जुमला समझ में आया आपको पठाने खान ने भी क्या कहा है? कहता है यार फरीदा सोना पीर फरीदा बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद खुदा की कसम मोहब्बत है इश्क है मेरा, मैं यकीनन जो है अगला सफर इश्क मेरा दो जगहों में से कोई एक होगा, या हजरत लाल शहबाज कलंदर या ये जो है मिठन कोट जो बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद की दरगाह है। कहते हैं कि ख्वाजा गुलाम फरीदा ओह सुहागन थैया चिड़िया नाल माही दे गंदियां। कहता है कि जो अपने महबूब के साथ रह जाए ना असल में सुहागन वही हैं।

यार वे तू, यार वे तू। थोड़े से हल्के हो जाओ यार जिंदगी में, थोड़ा सा लाइट हो जाओ। क्यों इतना भाग रहे हो, क्यों इतनी टेंशन है जिंदगी में, किस चीज का इतना खौफ है? मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो चाहते हो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जो चाहते हो जाए तो क्या हो जाएगा? दिन में 3 रोटी 2 रोटी तुम्हें चाहिए। मेहनत करो, स्ट्रगल करो, अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गलत फैसले हो जाए, रिपेंट करो, आगे बढ़ो जिंदगी में। हाँ, लेकिन ऐसा मत करो, अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाओ कि जानबूझ के गलत फैसले कर ही जाओ। एक अपने आप को समझो नहीं, बिना कैलकुलेटेड रिस्क लिए जाओ, ये काम ना करो जिंदगी में। लेकिन इतना डरो नहीं जिंदगी में, कुछ भी नहीं है ये। आप जितनी प्लानिंग करते हैं, क्या पता अगले आधे घंटे के बाद आप इस दुनिया में ही ना हो। जाहिर है मैं जानता हूं कि इस सोच के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है, प्लानिंग तो आपको करनी है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। हम कहते ना यार ये हो जाए तो सब, अरे कुछ भी नहीं भाई, कोई मिल गया तो क्या, कोई ना मिला तो क्या, कोई साथ चला तो क्या, कोई साथ ना चला तो क्या।

हकीकत है, मैं क्या करूं। इश्क फकत इमाम हैदर अलैह सलाम। मैं जानता हूँ नहीं सुनने को मिलती है आप लोगों को ये चीजें, बोर तो नहीं हो रही हो यार? मेरा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ आप लोगों को खुश एंटरटेन करना होता है। मैं अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को बोर तो नहीं हो रहे हो? ये नायाब चीजें हैं, सुन लो आज। हाय हाय हाय मस्जिद मेंबर, हाय हाय हाय।

यार सुनो यार, सुनो यार, सुनो, कब सुनोगे ये चीजें यार। कहता है मेंढा जिक्र भी तू, मेंढा फिक्र भी तू, मेंढा जौक भी तू, वजदान भी तू।

भाई वाह भाई वाह। अच्छा मुझे मेहर का व्हाट्सएप आया, कह रहे हैं वो बताएं बात आप को जो मैंने कही थी। अच्छा यार ये हकीकत है, आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट किया किसी ने, एंड मेहर वॉज लाइक जिशान भाई ऐसा नहीं है, मुझे डील करने दें। तो ऐसा ही हुआ, चूंकि मैंने आपसे पूछा था मैं क्या करूँ, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि लेट द मेहर हैंडल इट। और जो अमाउंट कोट की थी मेहर ने उसी पे उन्होंने एग्री किया, जबकि जब मेरे से उन्होंने रابطہ किया तो उससे हाफ पेमेंट पे चाहते थे कि मैं जाऊं। और आई वाज एग्री, इवन यकीन करें मैंने मेहर को ये भी कह दिया कि यार नहीं होंगे पैसे, ना छोड़ दो ना करो, चले जाते हैं, कोई मसला नहीं कर लेते हैं, नहीं होंगे पैसे इसलिए कह रहे हैं। तो ही वाज लाइक जिशान भाई मेहरबानी करें थोड़ी देर खामोश रहें। तो अभी मैंने वो मैसेज देखा है उसका, तो भाई यस यू गाइस वर राइट एंड मेहर वाज राइट। मुझे ये नहीं, 2 + 2 = 4 मुझसे नहीं होता, ना मुझे समझ में आता, आप यकीन करें मैं आपको सही बता रहा हूँ।

भाई जिए, भाई जिए, सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। पठाने खान साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन भाई सलामत रहें, उस अगले जहान में सलामत रहें। इस दुनिया का क्या आज है कल नहीं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में एक बात कही थी कि मुझे याद कराना, तुम में से किसी ने याद नहीं कराई और प्रोग्राम जो है एंड होने का टाइम हो गया है, किसी को याद नहीं रही है। By the way, मैंने अभी तक इंस्टा से मैसेज शामिल नहीं किए, इस कलाम के साथ साथ इंस्टा से मैसेज शामिल करूंगा। इंस्टा पे अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। इंस्टा पे जाइए, वहां पे ज़िशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR 46। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह।

मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं जान ले लेंगे आप किसी दिन, सलामत रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी जवानी सलामत रखे, जनाब अली अकबर के सदके अपनी जवानी गुजारो, माँ हुसैन की राजी हो तुम पे। बहुत सारे कर्जे हमारे हिस्से के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उतार दिए हैं, हाय हाय, सहरे बांधो, खुशियां मनाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथों में खिलाओ, उनसे प्यार करो, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को प्यार करो, उनको गोद में बिठाओ, उनको सीने पे सुलाओ, अपनी औरतों को पर्दे कराओ। बहुत सारे कर्जे उतारे हैं हमारे हिस्से के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तुम जवानी गुजारो, रहती दुनिया तक ये दीन, ये इस्लाम का बोल बाला रहेगा, ये जवान रहेगा, अली अकबर ने खून दिया है अपना इसको।

हमजा अली कह रहे हैं भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। फरवा रुबाब हमारे साथ हैं, पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं और सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजविया क्वीन हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुनीब हैं, लाइबा हैं, किरण खान हैं, गुलाफरीन खान हैं, अनम परवेज़ हैं, खाकजादी हैं, बानो हैं, स्टॉकर हैं, मरियम हैं, शाहजादी हैं, आयत कुरेशी हैं, कैकशा हमारे साथ हैं, खानसा हमारे साथ हैं, फातिमा कुरेशी हमारे साथ मौजूद हैं। कैटी पाए हमारे साथ हैं, सैयदा सलमा हमारे साथ हैं, हिरा हुसैन है कह लिए सलाम आर्जे, बहुत शुक्रिया। यमुना कह रही है अलैकुम, हमेशा की तरह वन लाइनर कमाल हैं आपके। आयशा खान कह रही हैं हेलो जी अंदाज़ा मेरी मोहब्बत का सभी लगा लेते हैं। जैस्मीन कह रही हैं आपका नाम आने पर जब हम मुस्कुरा देते हैं। जी ओ भाई सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ज़ुबैर अख्तर साहब हमारे साथ हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ एहतशाम चौधरी हैं, उमर शीमा हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अलैकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, क्या हाल है ब्रो। ओके वे नाम लड़की हमारे साथ, कुछ मैसेजेस अगर असल में ना आप लोगों के सेंसर भी करने पड़ते हैं। उसके अलावा हाना रोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया।

हम दुनिया में हमेशा इस चीज के ऊपर बहुत बात करते हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसा नहीं बनना चाहिए। मैं आपको दो तरह के लोगों के बारे में बताता हूँ जो मेरी नज़र में या मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसे हैं कि इंसान कुछ भी जिंदगी में कर ले, ये काम आपने नहीं करना है। अगर यंगस्टर मेरी बात सुन रहे हैं, दो तरह के लोग ऐसे हैं जो कि इंतहाई आखिरी दर्जे पर फाइज हो जाते हैं इंसानियत की, अगर वो ये दो काम कर ले। बाकी दुनियावी मामलात है, इंसान है, लेफ्ट राइट होता है, अल्लाह और उसका मामला, लेकिन ये दो काम कभी नहीं कीजिएगा जिंदगी में, कोशिश कीजिएगा कभी ना करें। एक वो शख्स इंतहाई घटिया होता है जो अपॉर्चुनिस्ट हो। अपॉर्चुनिस्ट वो शख्स होता है कि जब आपको जरूरत है आप उसको इस्तेमाल करें, और जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए या वो शख्स किसी बेहतर पोजीशन पे हो जाए तो क्या आपने, अब तो मुझे जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब आप किसी शहर में आए, आपको कोई नहीं जानता है, आपने किसी से हेल्प आउट, एक हेल्प मांगी, उसने आपकी हेल्प की, जब आपने उस शहर में अपना सही ठिकाना बना लिया, फिर आपने कहा नहीं तूने मेरे लिए क्या किया। मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक तो ये शख्स अपॉर्चुनिस्ट जिंदगी में कभी नहीं बनना है, कभी जिंदगी में अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना है आपने। दूसरी चीज, कभी भी आपने मजहब को बेचना नहीं है। मजहब को बेचने से मुराद ये है कि अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना। नेवर एवर इन द लाइफ, ठीक है? सो ये दो काम, और आपका कोई भी मजहब है, आप इस्लाम से हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दीगर मजाहब से भी हैं, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपने कभी भी उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ये दो काम नहीं करते हैं तो बाकी अच्छे बुरे लेफ्ट राइट आप होंगे, लेकिन इंतहाई आखिरी दर्जे पर आप नहीं पहुंचेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बहरअल्लाह मैंने आपसे कहा था कि जो भी शख्स ये बात सोचता है या उसको सुनने को मिलती है, अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई कहे कि आप कुर्बानी नहीं कर रहे, तो आपने कहना नहीं हमारी कुर्बानी है, हुई है, और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ रेफरेंस के साथ। तो कोई भी उम्मते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके नामे अमाल में नहीं लिखा गया होगा कि उसने कुर्बानी नहीं की। सबके ये लिखा होगा कि इसने कुर्बानी की, और आप शायद हैरान भी हों बारोज़े मैशर कि हमने तो कभी नहीं की थी कुर्बानी, पैसे नहीं थे, हालात ठीक नहीं थे, साहिब सतात नहीं थे, कैसे जानते हैं कैसे। आपके हिस्से की कुर्बानी आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी थी। सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 31, 32, आप इसको प्रॉपर जो इसका पूरा बाब है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो रसूल अल्लाह ने दो जानवरों को ज़िबा किया, एक अपने और अपनी बीवियों की तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। तो आपके हिस्से की कुर्बानी, अब इसका कतन ये मतलब नहीं है हिस्से की कुर्बानी से मुराद है कि आपने कुर्बानी नहीं करनी अगर आप साहिबे इस्तेदात भी हैं, लेकिन ये एक दिल जोई भी है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि साहिबे इस्तेदात नहीं है या इस बार नहीं बन पा रही है। बड़े बड़े लोगों की नहीं बन पा रही है। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पांच बकरे करते थे, वो एक बकरे पे आ गए हैं, जो एक करते थे उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, चलता है उतार चढ़ाव जिंदगी में। बल्कि ना एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ, मैं कहीं पर मौजूद था, तो ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, कि मतलब जो कहीं थोड़ी यहां से सुनी, थोड़ी यहां से सुनी, थोड़ी यहां से, उनको पता होता नहीं कि अभी बात डिलीवर कैसे करनी है। तो वो मैं कहीं बैठा हुआ था, तो

तो मैं बैठा हुआ था, तो वो उन्होंने कुछ पैसे दिए वहाँ पे, खातून थी एक, तो उनको देख के कहा कि अल्लाह आपके लिए सलामती का मामला करे, बस अल्लाह सबको देने वाला बनाए लेने वाला ना बनाए। मतलब आप एक बंदे को दे रहे हैं और उसके सामने ही कह रहे हैं कि बस दुआ करें अल्लाह ताला सबको लेने वाला बनाए, देने वाला बनाए लेने वाला ना बनाए। मतलब अक्सर ही हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बस अपना मोहताज रखे, अल्लाह ताला देने वाला हाथ रखे लेने वाला ना रखे। अब वो उसको ये नहीं पता है कि मैं ये जुमला यहाँ इसलिए नहीं कहना क्योंकि मैं किसी को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ये अगर मैं 1,000 रुपये 2,000 रुपये इसको पकड़ा रहा हूँ तो इसके सामने मुझे ये जुमला नहीं कहना कि अल्लाह ताला देने वाला हाथ रखे लेने वाला ना रखे, क्योंकि वो लेने वाला आपके सामने बैठा, वो क्या सोचेगा कि यार मैं वो लेने वाला हाथ हूँ जो लोग बनना नहीं चाहते, मेरे ऊपर ये वक्त आया हुआ है। तो खैर मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो मैंने एक्चुअली इंटरवीन किया, हालांकि मेरी आदत नहीं है दो लोग बात कर रहे हो तो मैं बात करूँ, लेकिन जब ये मैंने सुना और मेरे सामने हुआ तो मैंने उसी टाइम इंटरवीन किया और मैंने कहा कि इस दुनिया में जो लेने वाले हाथ हैं वो हम सबके हैं, देने वाला हाथ वाहिद है जो ऊपर है, जो अल्लाह पाक है, हमारे सबके हाथ लेने वाले हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास देने वाला हाथ हो, देने वाला हाथ सिर्फ ऊपर है, हम सभी के हाथ लेने वाले हैं।

तो खुश हो जाइए, आपके हिस्से की कुर्बानी आपके नबी कर गए आपके लिए। और ये जानवर की कुर्बानी क्या कुर्बानी है? असल कुर्बानी तो वो है जिसके बारे में कुरान में खुदा ने फरमाया कि इस कुर्बानी को मैंने मौखर किया किसी बड़ी कुर्बानी के लिए। उनके बच्चे आपके लिए इससे भी बड़ी कुर्बानी दे गए हैं। सेरे डालिए अपने बेटों को, अपने भाइयों को, आपके भाइयों के मान सलामत रहे। क्या ज़ैनब आपकी अपनी किस्मत, अब्बास आपकी अपनी किस्मत। आप अपने बेटों की जवानियों पर सुभान अल्लाह कहें, अली अकबर तेरी अपनी किस्मत। आप अपनी बेटियों को अपने सीनों पर सुलाएं, आकाजादी सकीना आपकी अपनी किस्मत। जनाबे सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने एक बार सवाल किया जिंदान में,

मेरा नाम जिशान नासिर है, इंस्टा पे जाके जिशान नासिर लिखे मैं मिल जाऊंगा। आपके मैसेजेस ब्राय राज प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा। इंस्टा पे जाइए, वहां पर लिखिए जिशान नासिर ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26। यहाँ पे जाइए, आपके मैसेजेस मुझे मौसूल होंगे, इंस्टा पे भेजिए और मैं वहां से आपके मैसेज शामिल करके आपसे फिर इजाजत लेता हूँ। खाकजादी हमारे साथ मौजूद है, गुलाफरीन खान हमारे साथ मौजूद है, लाइबा हमारे साथ है, उमर चीमा हमारे साथ है, मस्कत से सुंदस हमारे पास है, शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, एले हमारे साथ मौजूद हैं, मिराल हमारे साथ हैं, हुदा हैं, आयशा खान हैं, मानी हैं, ततीर जैनब हैं, फरवा रुबाब हैं, रिजविया क्वीन हैं, हमजा अली हैं, मोहसिन जिशानियन हमारे साथ हैं, लाइबा मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन जिशानियन हैं, एहतिशाम चौधरी हैं, हमजा रुहेल हैं, मलिया हैं, सैयदा जुनैरा हैं, कह रही हैं थोड़ी देर रोर रुक जाइए, अच्छा जी, जुबैर अख्तर हमारे साथ हैं, एलिगेटर हमारे साथ हैं, बिनाम लड़की हमारे साथ हैं, तानी मलिक हैं, कबाली हीर हैं, मिस्ट्रियस प्रिंसेस हमारे साथ हैं, मोहसिन जिशानियन वंस अगेन, हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। वेल जनाब, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शो। आई होप कि जितना अच्छा मुझे प्रोग्राम करके लगा है, उतना अच्छा आप लोगों को प्रोग्राम सुन के भी लगा होगा। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा, फीडबैक देने के लिए इंस्टा पे जाइए, वहां पर लिखिए जिशान नासिर, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26। यहाँ पे जाके आप मुझे अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो, और उसके साथ साथ मैसेज करके अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो जरूर मांगे, खुश नसीब है मांग जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा जामन, दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जमानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आप परफेक्ट हैं तो ठीक है, पर चलने दे जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा जामन। जिंदगी ने सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जिथा पैर होवे उथे ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उन्हां दे सदके साडी भी खैर। अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह हक, हक मौजूद सदा सदा सदा सदा मौजूद। अपना ख्याल रखिए, ईद की खुशियां जरूर मनाइए, जानवरों का ख्याल रखिए, प्यार कीजिए उनसे, अपनों का ख्याल रखिए, और जैसा कि मैंने कहा कि जिंदगी ने सांस सुने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों का पुकी जा रहा है, जिशान नासिर साइंस आउट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।